0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864

किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

उस परम पिता परमात्मा दे दरबार लगवा रहे हाजरी भक्ति संगीत दे प्रोग्राम आराधना दे नाल।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

निधि जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं आप। सवेर दे 6:50 होए ने। आओ हुण तुहानू अज दे प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दी जानकारी दे दईए। परिचय तहत सवेरे 7:02 ते लैके हाजिर होवांगे जानकारी ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम सोनी सवेर। 8:40 ते तुसी सुनोगे मसीही भजन। सवेरे 9:02 ते शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च उस्ताद राशिद खान होना तो शास्त्रीय गायन सुनोगे राग तोड़ी। सवेरे 9:30 का समा रहेगा प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान दा। अज दे इस प्रोग्राम च लीफाई मरीज स्कैन इस दे बारे वीनस मिट्टू जानकारी देंगे। होर पौद्यां दी सेहत बारे गल्लां होणगियां ते नाल ही ज्ञान विज्ञान वालियां खबरां होणगियां। दस बज के 2 मिनट ते तुहाडियां लाइव फोन कॉल्स दे जरिए फरमाइशां पुगावांगे। प्रोग्राम होएगा हैलो फरमाइश। 11:05 दा समा रहेगा प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी जिस दे विच तुसी सानू अपनियां व्हाट्सएप दे जरिए फरमाइशां भेजदे हो पंजाबी गीतां दे लई। 12:05 ते सुखदीप सिंह ते गुरप्रीत कौर लैके हाजिर हो जावांगे बच्चियां दा मन पौंदा प्रोग्राम बाल जगत। दिने 1:15 तो लैके 1:40 तक दा ते फिर 2:15 तक दा समा रोजाना प्रोग्राम फौजी वीरा लई दा। दिने 2:30 रंगली धरती प्रोग्राम दे विच प्रीतम सिंह ढाडी ते साथियां नू सुनोगे।

0: बिल्कुल जी आया नू भी कह रहे है ते प्रोग्राम कह रहे है कि हुन आपां जी आया नू कहना है उन्हां सुनेहां नू जिहड़े तुहाडे तक असी पहुंचाण जा रहे हां। बिल्कुल जी इन्हां सुनेहां तों बाद आ के गल करदी हां प्रोग्राम दे विच।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: लो जी, इन्हें सुनेहा तो बाद एक बार फिर तो लेके हाजिर हो गए हैं प्रोग्राम सोनी सवेर। ते प्रोग्राम सोनी सवेर दे विच हुन गल करते हैं उस हफ्ते दी जिहड़ा असी 8 तरीक तो मना रहे हैं। जी हाँ, UN ग्लोब रोड सेफ्टी वीक 2026 यानी कि सड़क सुरक्षा दे प्रति जागरूक करन वाला ये महीना, जिहड़ा कहिंदा है कि बिल्कुल असी जागरूक होना है ते होरां नूं भी करना है। दूजिआं नूं भी ये कहना है कि सड़क दे नियमां दी पालना जरूर करो, समझाउणा है। ते बिल्कुल रोज़ाना दे जिहड़े हादसे हुंदे ने ना, ओह भी कह रहे हुंदे ने कि हुण तां समझ जाइए। संयुक्त राष्ट्र विश्व सेहत संस्थावां वल्लों मनाया जाण वाला UN ग्लोब रोड सेफ्टी वीक दुनिया भर दे विच सड़क सुरक्षा प्रति जागरूक फैलाउण वाला दिन है, हफ्ता है। 2026 विच ये मुहिम लोगों नूं सुरक्षित ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों की पालना ते पैदल यात्रियों की सुरक्षा बारे जागरूक कर रही है। ये मुहिम का मकसद यही है कि सड़क हादसों को घटाया जाए, नौजवान अते बच्चों की सुरक्षा की जाए, हैलमेट ते सीट बैल्ट की जिहड़ी वरतों है वो ज़्यादा तो ज़्यादा सारे करिए, पैदल ते साइकल यात्रियों नूं सुरक्षित रखिए। दुनिया भर के हर साल लखां लोगों की मौत जिहड़ी सड़क हादसों के नाल हुंदी है, ते हफ्ता जिहड़ा सानूं याद करवाउंदा है कि सुरक्षा कोई चोण नहीं है, सगों हर जिंदगी की जरूरत है ते जिंदगी बहुत कीमती है। इसलिए सड़क ते रफ्तार दे नाल नहीं सगो समझदारी दे नाल चलना है, ड्राइविंग दे नियमां दा पालन करना है। ते हाँ, सड़क ते कोई कुताही नहीं वरतनी। एक छोटी जिही सावधानी जिहड़ी हुंदी है वो कईआं दे घर बचा सकती है, ते एक छोटी जिही अणगहिली घरां नूं खत्म भी कर सकती है। सो ट्रैफिक नियमों की पालना करिए, तेज़ रफ्तार तो बचिए, तो दूजियां दी सुरक्षा दा भी ध्यान रखिए, तो कई जिंदगियां जिहड़ियां ने वह बच जाणगियां। सो जिम्मेवारी वाली सोच नूं अपनाउण दे लई प्रेरित कर रहा है ये हफ्ता, तो जिम्मेवारी साथ साथ चलन दे विच संभल के चलन दे विच ही है।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ। ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे।

0: मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांगकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेक S. नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने

0: कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
4: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
5: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में

0: जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चित समाप्त। अभिनेता से राजनेता, टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक, बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate

0: 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश ने मसीही भजन जमिल होना दी आवाज़ दे विच आओ सुनते हैं ई मसीही भजन।

ईसी मसीही भजन। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 9 बजे ने हुन पेश ने जी मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटका अते तेलंगाना दे दौरे ते होंगे। वो आज हैदराबाद विच लगभग 9,400 करोड़ रुपए दे वख-वख विकास प्रोजेक्टां दा उद्घाटन करेंगे अते नींह पत्थर रखेंगे। तमिलनाडु विच टीवी के पार्टी दे मुखी सी जोसेफ विजय आज राज दे नवे मुख्यमंत्री वजो सहुं चुकणगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी नू पोंडेचेरी दा मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। रक्षा खोज ते विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद विच स्क्रैमजेट कंबस्टर दी सफल परख दे नाल हाइपरसोनिक मिसाइल विकास प्रोग्राम विच वड्डी सफलता हासिल कीती है। गृह मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली विच एक उच्च पदरी मीटिंग च संभावित हड़ा ते लू नाल नजिठण दियां तैयारियां दी समीक्षा करनगे। केंद्र सरकार ने किरत कोड लई

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: पेश नी मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटका अते तेलंगाना दे दौरे ते होणगे। अज ओ हैदराबाद विच लगभग 4,400 करोड़ रुपए दे वक-वक विकास प्रोजेक्टां दा उद्घाटन करनगे अते नींह पत्थर रखणगे। तमिलनाडु विच TVK पार्टी दे मुखी सी जोसेफ विजे अज राज दे नवे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी नूं पौंडेचेरी दा मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। रक्षा खोज अते विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद विच स्क्रैमजेट कंबस्टर दी सफलता पूर्वक परख दे नाल हाइप्रोसैनिक मिसाइल विकास प्रोग्राम विच वड्डी सफलता हासिल कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह अज नवी दिल्ली विच एक उच्च पदरी मीटिंग च संभावित हड़ा अते लू नाल नजिठण दीआं तैयारियां दी समीक्षा करनगे। केंद्र सरकार ने किरत कोड लई नवे

0: प्रोग्राम चल रहे जी। हेलो फरमाइश थे प्रोग्राम दे विच 0181 तेई बताली 173 नंबर मिला के पहुंच गए ने साढ़े अज दे दूसरे कॉलर। हेलो हेलो
1: हाँ जी, सत श्री अकाल भैन जी।
0: सत श्री अकाल जी।
1: मैं मलकीत सिंह कड़ियाणा जी, आ रही नवी बस्ती बठिंडे का बोलना। मेरा पिंड है कड़ियाणा जी,
0: वाह
1: तो थोड़े
0: जी वाह।
1: प्रोग्राम रैप से सुन रहे हैं इस टाइम।
0: ओए होए चलो जी, बहुत
1: हेलो।
0: वधिया गल है। बिल्कुल
1: हाँ जी,
0: जी,
1: बात
0: बहुत
1: थोड़ी
0: बहुत
1: कट रही है,
0: स्वागत है
1: चलो मैं सुन रहे भाई। हाँ
0: जी।
1: जी, मैं सफर फिल्म का सुनना है, जिंदगी एक सफर आई, वो सुना दे जी।
0: हाँ जी ठीक है जी,
1: हाँ जी, थोड़ा बहुत धन्यवाद जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भी फोन मिलाने दे।
1: हाँ जी, आवाज थोड़ी जी कट आ रही थी, इसे करके थोड़ा कट सुन रहे
0: जी
1: जी।

0: लो जी, प्रोग्राम चल रहा है। हैलो फरमाइश। ते प्रोग्राम दे विच अगली हैलो आओ जानते हैं कि ना दिए। नमस्कार जी।
1: हेलो, सत श्री अकाल मैडम जी।
0: सत श्री अकाल जी।
1: मैडम जी, मैं राजू बोलदा जी, चंडीगढ़ तो।
0: वाह जी वाह, राजू जी स्वागत है प्रोग्राम दे विच।
1: आम फिल्म दा गीत सुनना है
0: जी। बिल्कुल सुनावांगे। ते प्रोग्राम फिर सुनते रहते हो आकाशवाणी दी, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अक्सर फोन कॉल भी लग जाती है, तो जिन्हें नहीं लगती राजू जी, उन्होंने लिए कोई सुझाव है?
1: कोशिश करनी पैंदी है मैडम जी लगातार।
0: ओए होए, ठीक है
1: जी,
0: जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, कोशिशां कामयाब
1: हाँ
0: हुंदियां ने, है ना?
1: कई बार घंटा घंटा असीं मिलांदे रहिंदे आ जी, लगदा नहीं।
0: ओहो, ठीक है, कोशिश करनी है
1: हाँ
0: ते आस नहीं छड़नी, है ना? ठीक है जी, नाम
1: ठीक है
0: फिल्म
1: जी,
0: दा गीत सुनाने हैं। प्रोग्राम दे विच फोन कीता उस दे लई शुक्रगुजार।
1: धन्यवाद।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

के ऊपर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी। हेलो फरमाइश, ते आओ प्रोग्राम दे विच गल कर दिया साड़ी अगली कॉलर साहब नाल। हेलो,
1: हेलो माधुमी, नमस्कार। सुखबीर
0: नमस्कार जी।
1: सिंह शाजड़ी बोलता जी, संगरूर तो।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच।
1: शुक्रिया मानो जी, बहुत वधिया प्रोग्राम पेश कर रहे हो। मदर डे दी तुहानू मुबारकां जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत मुबारक
1: हाँ
0: ते
1: जी,
0: अज
1: बाकी
0: दा
1: तकनीकी
0: सलाम
1: वीरां
0: मनाओ।
1: नू बेनती है, आवाज जमी नहीं आ रही मैडम जी, वाली आवाज ठीक करनी जी।
0: पर मैनू तो लगता अपनी आवाज बिल्कुल सही जा रही है हुन।
1: ना फोन च नहीं मैडम जी आ रही, मैं रेडियो थ्रू गल कर रहे। हाँ
0: ओए होए,
1: जी
0: रेडियो
1: हाँ
0: थ्रू
1: हाँ
0: बहुत साफ गल हो रही है अपनी,
1: जी,
0: बिल्कुल साफ गल हो रही है। मैं क्या
1: अच्छा, चलो ठीक है जी।
0: ठीक है जी। गीत कड़ा सुना दिए फिर।
1: बाकी मैनू भी जलंधर रेडियो साडा फेवरेट चैनल है जी, बहुत वधिया चैनल है, बहुत वधिया गाने चलते ने इत्थों। गाना दसो जी लाडला मूवी का।
0: ठीक है जी, ठीक है जी। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया मैडम जी।
0: तुहाड़ा गीत जरूर सुनावांगे पर एक अंतराल तो बाद।
1: अच्छा ठीक है जी, ठीक है।
0: जी बिल्कुल जी, गीतां दी लड़ी जड़ी चल रही है वो होर भी अगे कंटिन्यू जरूर होएगी, पर उस तो पहला प्रोग्राम दे विच जिहड़ी जरूरी सुनी ही ताड़ी तक पहुँचाने ने वो पहुँचा दिने आ, ते फिर आके सुनाने आ तुहानू तुहाड़ी पसंद दे होर गीत भी।
2: सारे लिए समाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: हुण तक 8,85,00,000 तो वध लाभपात्री इस योजना नाल जुड़ चुके हैं। जेकर तुहाडी उम्र भी 18 तो 40 साल दे विचकार है तां महीनावार अटल पेंशन समेत योजना दे 3 गारंटी शुदा लाभां बारे जानकारी लई अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: हेलो, सत श्री अकाल मैम जी। हेलो,
1: हेलो। लो जी, साढ़े सुरोते गुमसुम हो गए लगते ने, क्योंकि प्रोग्राम दे विच। हेलो
0: हेलो, धन्यवाद
1: हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच।
0: जी।
1: जी केड़े दोस्त पहुंचे ने, कितों आए ने?
0: बजीरपुर को माता बलजीत सिंह।
1: वाह जी वाह, प्रोग्राम दे विच फोन कॉल मिली गई है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत क्वेश्चन मिलती है जी। मैं तो जदों का प्रोग्राम चलिया उदों ने ही लग्या रहा। हाँ
1: वाह जी वाह, चलो कोई
0: जी,
1: गल नहीं, देरी हुई पर दुरुस्ती भी है। दसो मैनू गीत केड़ा सुनोगे?
0: फिर मतलब रास्ते का गीत है जी।

0: वाह जी वाह, प्रोग्राम दे विच फोन कॉल मिल ही गई है ना?
1: हाँ जी हाँ जी, वो बहुत कोस्ट ना मिलती है जी, मैं तो जदों का प्रोग्राम चलिया उदों नहीं लग गया रहा।
0: वाह जी वाह, चलो कोई गल नहीं, देरी हुई पर दुरुस्ती भी है। दसो मैनू गीत केड़ा सुनोगे?
1: फिल्म दो रास्ते का गीत है जी, छुप के तारे नजारे क्या बात होगी।
0: ठीक है जी, बिल्कुल जी, यही गीत सुना रही हूँ। फोन करने के लिए शुक्रिया।
1: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।

0: ਇਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 10:59 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਦੁਆ ਇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੜੀ ਬਰਕਰਾਰ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ, ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਅਦ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। तमिलनाडु में तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 9 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। 120 विधायकों के समर्थन के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को कहा है। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं। वे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गुजरात का सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी गौरवमयी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों को सफल परीक्षण के लिए

0: बधाई दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आज आंधी आने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के उपमालयी क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की संभावना है। आज गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का भी अनुमान है। ईरान की नौसेना ने ईरानी तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाज़ों पर किसी भी हमले के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों और जहाज़ों पर जोरदार हमले की चेतावनी दी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और आसपास के इलाकों में ईरानी और अमरीकी सेनाओं के बीच हाल की छिटपुट झड़पों के बाद ये बयान आया है। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में भारत की अक्षिता, अंजी, सोनिया और तन्वी ने फाइनल में जगह बनाई है। इसके अलावा हंशिका अत्री, सुनैना और भूमिका ने भी खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। तन्वी ने 64 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की यास्मीन जौत खानोवा को हराया। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। एक अन्य मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

खान, वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन, बाबू अहद, मिफरा नास, बेबी चाहत, इन्हें दादा बाबू रोड, गिरडी ही झारखंड तो, उदय भान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश, बघेल ते सारा परिवार, पाल परिवार, पिंड रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश तो, पिंड शाहपुर मैतपुर तो, बूटा सिंह, विजयपाल, अजयपाल, पाहुलजोत, अनाहत, लवप्रीत, परविंदर ते परिवार, पनवीर हाउस, आदर्श नगर भिंडा तो, इंजीनियर अशोक ग्रोवर, प्रवीण, विक्रमजीत, अनमोल, पवनीत, ऐसे की दी फरमाइश, रमे हैबोवाल अपने पूरे परिवार नाल, हैबोवाल कला हलका उत्तरी जिला लुधियाना तो, दादरे गेट भिवानी तो, कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा परिवार, मखू तो, बिला बजाज, हैप्पी कपूर, फिरोजपुरी ते मनीष बजाज, पिंड कबूल शाह, खुब्बन, जिला फाजिलका तो, बलतेज, नवजोत, हरमन, हैरी, हैप्पी ते परिवार, पिंड चंद बाजा, फरीदकोट तो, अंग्रेज सिंह गेजा, गुरमीत, जगप्रीत, मनप्रीत, करमजीत, चरणजीत, नवकीरत, गुरसीरत, गुरप्रताप ते सारा ही पूर्वा परिवार, नरवेल महाराष्ट्र, पी एस नवाकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर तो, नारायण इंगले, राजकुमार, खर्चे, आशीष मुरकर ते परिवार, हरजीत कैंथ, मोजी कलोनी डाबा, लुधियाना तो, पिंड नथाणा, जिला भिंडर, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता ते गीता, जिला फाजिलका तो, पिंड बजीतपुर, जिला फाजिलका, पिंड बाजितपुर तो, पुमा तो, बलजीत सिंह, बलदेव, संतपुरा तो, टेक सिंह, वड़िंग खेड़ा, भोला सिंह ते इना दा परिवार, पद्मा टॉकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश तो, सुदर्शन पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, तिरजिंदर जी शाह, शारा शाह परिवार, प्रोग्राम है तमक जलंधर पेंदी, चल रहा है आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो, जो कि मैसेज से आधारित होंगे, और इन्होंने मैसेज तो बाद हम थोड़ी नज़र कर रहे हैं गीत, आवाज़ है महेंद्र कपूर होरों की, और आप जिमें जानते ही हैं कि अज आप मदर्स डे सैलीब्रेट कर रहे हैं, माँ जो हर तरह का दुख सह के अपनी औलाद वास्ते बहुत ज़्यादा सुख कामनावां मंगती है, और इस तरह साड़ी भी कोशिश होनी चाहिए कि असी वध तो वध सुख अपनी माँ नूं दे सकीए, कोशिश करिए कि साडे वल्लों कोई उन्हां नूं समस्या ना होवे, ताई करके असी जिवें कि बिरध आश्रम खुले ने, शायद उन्हां दी लोड़ ना हुंदी जेकर असी अपने घर विच सारियां समस्यावां नूं सुलझा के अपने माँ बाप दी वधेरे कदर करदे, असी दान करन चाहे बाहर जाने पर जेकर असी अपने माँ बाप दी सेवा नहीं करदे तां इह साडे लई बहुत ही माड़ी गल है, क्योंकि अज जो असी करांगे उही सानूं कल नूं वापस मिलेगा, इस गल नूं सानूं हमेशा ही याद रखना चाहिए, ते फिर शुरुआत करदे हां महेंद्रपुर दे गाए गीत दे नाल।

कनेरा मोहला पटाला तो मुकेश नीलम बत्ता नितिन कलक पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक वंश अर्शदीप सिंह सुरजीत सिंह अमरकोट तो मेन बाजार थाना शेरपुर जिला संगरूर तो। अगले गीत की फरमाइश पिंड कुम्हार हेड़ा सहारनपुर तो। सैयद मसूर साइना अक्सा नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम अदीब हुसैन मैस गेट नाबा तो। सोमदत्त ज्योति रानी कैरव गुरमन्नत मेन बाजार शेरपुर जिला संगरूर तो। कमलजीत कौर अजीत ते अमनदीप गमरिया जमशेदपुर तो। बिपिन स्वाति देव कुमार आर्य कुमार जायसवाल परिवार इसे ही गीत की फरमाइश है। इकबाल सिंह हटूर रजिंदर ते परिवार मरहर दरवाजा इटा तो। नबी हसन अब्बासी शनाज नवेद सुहेल अनम यशफ मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार नरगिस खातून जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश तो। वीरेंद्र शर्मा कमलेश दीक्षा रॉबिन वियान शर्मा धर्मकोट मोगा तो। सुशीला देवी मंदूरकर सदानंद कुमार गौरव मंदूरकर आरव ते अर्पिता डाबकी रोड अकोला तो। चकिया बाजार चंदौली तो सुंदर सुमन जायसवाल रामनगर कदमा जमशेदपुर तो मराहो देवंती जायसवाल बबूरी बाजार चंदौली तो विजय सरोज जायसवाल गमरिया जमशेदपुर तो रोहन ते आर्या जायसवाल। खैर बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य लाटो नानक चंद रोहतक तो पीयूष गोयल ते डुगू सिक्का कुड़ी सैक्टर पांच सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र मोहिनी कल्पित बेबी गरवी बेबी बॉय हिमाक्षी पिंड धौला किंगरा नेड़े मलोट तो जगतार सिंह जग्गा केंद्रपाल कौर मनदीप सिंह कुलदीप कौर बब्बू रानी नीतू रानी मलोट पिंड तो कुलवंत तेना दा परिवार दतरेंगी तो भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीत ते रुद्र वर्मा गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो पिंड इस्लाम वाला जिला फाजिलका तो सोहन लाल राठी ओम प्रकाश शगुन लवकुश छत्रपाल सिंह खंगारवा रजिंदर सिंह बाबू सिंह महने वाला काका भट्टी पिंड कमाल वाला गुरमीत सिंह बिरक ते सारा ही परिवार सुन रहे हैं जी गीत अमरिंदर गिल होरां दी आवाज़ विच।

जिला मुरादाबाद तुलापुर उत्तर प्रदेश तो। पटेल नगर मोड़ तो डॉक्टर मिश्मा जजोरिया गीता गगनदीप आरजू ते गुड्डू। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना तो विनोदपुरी वीपी अशोक सुशील बीके कैलाश नीलम रमापुरी वीके ते विनोदपुरी। अब सुन सब फरमाइश से गीत आवाज़ है हंसराज हंसोरा दी।

0: खान, फैजान, अनु, उस्मान, कलीम, गंज, चंदवारा। तो पिंड शाहपुर, जाजन, तहसील डेरा बाबा नानक, तो रजवंत सिंह रंधावा, निशान सिंह, ते फौजी अमरीक सिंह। सेक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा। तो विनय मीनाक्षी पुलवामा, डॉक्टर ईशानी। अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जिम जैन, सरदना मेरठ। तो आदि जैन, अंश जैन ते भव्य जैन। एस एम जावेद, गुमला, झारखंड। तो मुलापुर दाखा मंडी तो राजेश जैन, बिट्टू अरुणा, दीपक गौतम, बिट्टी मट्टू। हैमिल्टन न्यूजीलैंड तो अभिषेक, दीपू, मनजिंदर, जशनप्रीत संधू, बाबी संधू ते परिवार। फाजिलका तो खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, शलानी, टिवानशी ते सारा ही खेड़ा परिवार। मलेका सिरसा तो राम स्वरूप लुहानी वाला, परमजीत पम्मी, पूजा ते परिवार। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, पप्पी, नवनीत ते सोनू भाटिया। ए सी प्रोग्राम धमक जलंधर पेंदी। कल ठीक है, प्रोग्राम लेके आवांगे तेने 11:05 ते। असं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 12 बजे ने सुन रहे हैं समाचार हिंदी विच।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व सरमा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद

बाद में स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਗੇ ਬਾਲ ਜਗਤ।

0: जय हिंद। चन सितारे बड़े प्यारे, बदल रुख पर बात, अपने आप ने बदली जांदे सुंदर दिन ते रात। और जदो सुंदर दिन ते रात बदलदे ने और एतवार दी खूबसूरत जी दोपहर आउंदी है ते बच्चियां दा मनपसंद प्रोग्राम लैके आउंदी है उन्हां दे रेडियो सेट उपर। और हुण सुखदीप और गुरप्रीत दी करो जी कबूल तुसी हाजरी इस बच्चियां दे प्रोग्राम बाल जगत दे विच।
1: प्रोग्राम बाल जगत दे विच हमेशा दी तरह इस बार भी सुमेल लेके आए हां गल्लां बातां दा तुहाडे नाल सांझ पावांगे जानकारी दी, मनोरंजन दी, और बच्चियां दी हाजरियां वी जरूर ते जरूर लगणगीआं। और जदों असीं गल करदे हां तुहाडे मनपसंद प्रोग्राम बाल जगत दी, बच्चिओ तुहानूं हमेशा आगाह करदे हां, सतर्क करदे हां, जागरूक करदे हां, कोशिश करदे हां इहो जिही इक कि तुसीं इक परिपक्व शख्सियत दे मालक बण सको, क्योंकि शुरुआत जिहड़ी है उह बचपन तों ही हुंदी है।
0: और बचपन की जदों गल हुंदी है तां मैनूं ओह खूबसूरत लाइनां याद आउंदियां ने अज दे दिन करके कि मां वर्गा घनछावां बूटा मैनूं नज़र ना आए, लै के जिस तों छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। और वाकई जी मां दुनिया दे उत्ते एक यूनिवर्सल फेनोमेना, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। और मां जिहड़ी है ना वह निरस्वार्थ अपने बच्चियां दी सेवा करदी है, उन्हां नूं पालदी है, पोसदी है और कामयाबी वल वधदियां देखदी है कि जिस दा दुनिया ते कोई होर सानी नहीं है।

0: खूबसूरत जी म्यूजिकल ब्रेक तो बाद एक बारी फिर स्वागत है। बच्चों का मनपसंद प्रोग्राम चलता पाया जी बाल जगत, और बाल जगत दे विच बाल कलाकार भी खूब कमाल करते हैं। घर बैठे जिहड़े बच्चे ने वह की करते हैं कि अपने स्मार्टफोन का स्मार्ट वाला प्रयोग करके वह सानू अपनियां रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं। रिकॉर्डिंग दे विच की हुंदा है कि कोई कविता, कोई कहानी, कोई गीत, और कदी कदी तो वह इंस्ट्रूमेंट भी कोई प्ले करके भेजते हैं। और असी की करते हैं उस आवाज़ नू, उस परफॉर्मेंस नू इस प्रोग्राम दे विच हर ऐतवार पेश करते हैं। और बहुत वारी बच्चे गुरप्रीत जी इदा भी करते हैं कि सानू चिट्ठियां भी कई बार लिखनिया शुरू कर देंगे ने। सो प्यारे बच्चे तुहाडा फीडबैक जिहड़ा है ना वह सानू चंगा लगता है, और तुसी ये फीडबैक जरूर देंदे रहना है कि तुहानू ये प्रोग्राम किवें दा लगता है, और तुसी किवें दियां इहदे विच शमूलियत कर सकते हो। और फिलहाल असी खोलन वाले हाँ बच्चियां दे उस खूबसूरत प्रेजेंटेशन दा पटारा जिहदे विच उहनां दियां प्रेजेंटेशन आईयां होईयां ने साडे
1: कोल। बिल्कुल, और जदों असी गल करदे हां नन्ही कलम दी, नन्ही कलम दे जरिए हमेशा ते हमेशा वक्खरियां वक्खरियां हाजरियां तां लगदियां ने, और तुहाडे लई इक इंस्पिरेशन दा सोर्स बनदा है बच्चो, जिस दे जरिए तुसी भी सोच विचार सकदे हो कि असी भी अपनी आवाज़ जिहड़ी है आवाम तक पहुँचा सकते हैं, या फिर जदों कला दे खेत्र दे विच असी अपने आप नूं अगे लैके जाणा हुंदा ते बहुत ही वधिया प्लेटफॉर्म है तुहाडे सारयां दे लई। आकाशवाणी तो जिहड़ा प्रोग्राम बाल जगत पेश हो रहा, और जदों तुहाडी हाजरियां दी वारी आ जांदी है बच्चो, ना ना करदियां भी सानूं अपनी गल्लां बातां ते विराम लगाउणा पैंदा है। बिल्कुल बहुत जरूरी है तुहाडियां हाजरियां भी। सो शुरुआत करदे हां सिलसिला नन्ही कलम दा, आओ सारे रल मिल के सुणदे हां सब तों पहली पेशकारी।
2: सत श्री अकाल जी, अज असीं तुहानूं कबीर जी दे दोहे सुणाउण जा रहे हां।

0: बाल जगत प्रोग्राम दे विच सिलसिला चलदा पिया नन्नी कलम दा, और नन्नी कलम दी ए पहली प्रेजेंटेशन सानू ब्यास तो रिकॉर्ड करके भेजी सी बच्चियां ने, और वाकई जी ब्यास वाले जिहड़े गुरप्रीत जी बच्चे ने ना, इन्हां दी म्यूजिक दे उत्ते बहुत मास्टरी आ, और इहदे लई इन्हां दे जिहड़े टीचर साहिबान ने ओह वी वधाई दे पात्र ने। ते बच्चे ते वाकई जी टीचर साहिबान दा जदों क्या मानदे ने, अपने पेरेंट्स दा क्या मानदे ने, और फिर उहनां दी वाह वाह होनी ते सुभाविक जी गल है
1: जी। बिल्कुल, जदों असीं किसे काम नूं करदे हाँ उसकी शुरुआत करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है पहलां तां, फिर जदों असीं शुरुआत कर लैंदे हाँ, जे असीं उसनूं अचीव करना है उस काम नूं, चाहे पढ़ाई नाल संबंधित है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, खेडां ने, जिहड़ा भी काम है, उहदे विच बच्चिओ कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जे तुसीं लगातारता उहदे विच बनाई रखदे हो, तुहानूं पता है कि मैनूं 2 घंटे चाहीदे आ, तां असीं अपना मोबाइल ते बिल्कुल हथ नहीं अजमाउणा, असीं फालतू दी गॉसिपिंग ते काम नहीं करना, इधर उधर बैठ के लेजी नहीं होना, असीं उस काम दे लई डट जाने हैं ना, जदों एक टाइम सैट कर लैंदे आ, उह टाइम बिना घड़ी तों तुहानूं अपने आप आवाज़ां मारन लग जांदा है कि हुण शाम दे 5, 6 या 7 वज गए ने, तुहाडा रियाज़ दा, प्रैक्टिस दा या ग्राउंड जाण दा टाइम आ गया, तां तुहानूं घड़ी वल वी नहीं देखणा पैंदा। सो स्टे कंसिस्टेंट ऑलवेज, हमेशा ते हमेशा लगातारता बनाए रखो अपने काम दे विच।
0: सो प्यारे बच्चिओ, तुहाडा जिहड़ा इंटरनेट है, तुहाडा जिहड़ा सोशल मीडिया है, उह वी इसे चीज़ दे उत्ते पहरा दिंदा है। उह कहिंदा है कि जदों वी तुसीं कंसिस्टेंसी बना के रखदे हो किसी भी चैनल दे उपर, किसी भी पेज दे उपर, तो फिर उहदे उपर लाइक्स जिहड़े ने, कमेंट जिहड़े ने, उह तुहानूं बहुत सारियां उपलब्धियां हासिल करवा दिंदे ने। सो प्यारे बच्चिओ, कंसिस्टेंसी बना के रखो अपनी पढ़ाई दे विच, क्योंकि तुहाडी पढ़ाई दी उमर है।
1: विराम सुखदेव जी, इत्थे तुसीं हुण इक गल कीती है ना व्यूज़ दी, लाइक्स दी, तां असीं जरूर ते जरूर इह वी जानणा पावांगे बच्चिओ कि जे तुसीं सोशल मीडिया ते अपने आप नूं लै के भी आउणा है, तां सुखदेव जी उहदे लई वी बच्चिआं नूं जरूर आगाह करो कि असीं किस तरीके अपने आप नूं सही सूझवान तरीके लै के आ सकदे हां पेरेंट्स दी निगरानी दे हेठ।
0: देखो जी, इहदे बारे वी प्यारे बच्चिओ जरूर गल करांगे, पर हले ना अगला जिहड़ा दोस्त है उह कहिंदा पिआ वी मैं तुहानूं कहानी लिख के रिकॉर्ड करके भेजी है, तुसीं पहलां उह दोस्तां नूं सुणा दिओ, और उस तों बाद दस्सांगे कि इह लाइक्स कमेंट जिहड़े ने इह किवें वर्क करदे ने, की इहनां दे डू एंड डोंट्स ने। सो प्यारे बच्चिओ, तुसीं किते नहीं जाणा, इसे तरह सुनते जाना है प्रोग्राम बाल जगत, और फिलहाल आप सब मिलजुल के सुनते हैं ये खूबसूरत जी परफॉर्मेंस।
2: एक ना मैं तुम्हें गल सुना, एक सीगा छोटा बच्चा, वो 5 साल उम्र सी, हौली हौली वड्डा होया, फिर वो एक दिन PTMI स्कूल से लग गया, तो वो गया स्कूल अपनी माँ को लेके, तो कहिंदा माँ मैंने तेरे ना शर्म आती है। दरअसल ना वो माँ से जी इधरों एक कख तो कहानी सी, तो कहिंदा माँ मैंने शर्म आती, तू मेरे नाल ना आया कर। फिर वो माँ बहुत उदास हुई, फिर वो वड्डा हो गया, वो बच्चे हो गए। एक दिन वो घरवाली ने कहा, वो पत्नी ने, कि मैं तेरी माँ ना नहीं रह सकती, साड़ी इमेज खराब होंगी। दरअसल ना वो बहुत अमीर हो चुके सी, ते नहीं सी अपनी माँ नाल रखना चाहते, तो उन्होंने डिसाइड किया इस माँ नूं आपां छड्ड आउने आ किसी अपार्टमेंट, तो उन्होंने एक मकान उन्होंने खरीद के दिता, तो उत्थे बेचारी कल्ली रहन लग गई, उन्हें कहना सीगा। तो फिर उन्हें किया कि मतलब बहुत एक दिन बीमार हो गई सी, तो उन्हें अपने मुंडे ने दसिया, उन्हें कुछ नहीं किया, उन्हें मेडिसिन भी उन्होंने लिया के दी, तो उन्हें कहा चल कोई गल नहीं। तो फिर जी माँ सी फिर आखिरी टाइम ना उन्हें एक चिट्ठी लिखी, तो आप उन्हें विश्वास उदे पूरे हो गए। तो फिर वह जो मुंडा सीगा उन्होंने मिलने लिए आया एक दिन अपने बच्चे पत्नी लैके, फिर जी उसकी माँ सी उन्होंने पता चल गया कि नहीं रही साड़ी माँ इस दुनिया च, तो उत्थे ना एक उसकी अलमारी उन्होंने खोली, संदूक वगैरह विचों एक चिट्ठी मिली, उन्हें चिट्ठी पढ़ी, तो मतलब ना उन्हों का दिल सीगा जिहड़ा वह पिघल ही गया, तो मुंडा फुट फुट के रोन लग गया। वह गल सी कि जो बच्चा छोटा सी ना, वो एक बार तीर कमाना खेलता सी, वो तीर सीगा वह चेरी दी अख चा के वजे, फिर उसकी माँ को सह नहीं गया, क्या मेरा की है, मैं तो हूँ बुढ़ी हो जाना, इन्हें सारी उम्र जीना वा, उन्होंने दुख है, उन्हें अपनी अख कट के अपने बच्चे ने देती। तो जो उसने आ वाली चिट्ठी पढ़ी तो इन्ना रोया, इन्ना रोया। इस करके कहिंदे आ कि मामा दी कदर करनी चाहिए, जे माँ चली गई ना एक बार माफ, बस उहदियां यादां ही वापस आउंदियां, उह नहीं आउंदी।
0: वाह जी वाह, बच्चे ने बड़ी खूबसूरत माँ दी जिहड़ी ममता है उहनूं बयान करदी इक कहानी सुनाई है, और सिखण वाली चीज़ बच्चिओ इहदे विचों बहुत ही खूबसूरत है कि ये जिहड़े रिश्ते ने ना, इन्हां दा निग, इन्हां दा मोह सानू सदा मानना चाहीदा है, और इहदे विच प्यार बना के रखना चाहीदा है, क्योंकि रिश्तियां तो बिना जिहड़ी साडी जिंदगी है वह बहुत अधूरी ते सुनी है। सो कोशिश

0: टाइगर, राइनो, स्नो लेपर्ड जिहड़े हो गए, या फिर सी टर्टल्स जिहड़े ने, ये बहुत ही ज़्यादा खतरे दे विच ने। सो यूनाइटेड स्टेट्स दे विच जदों असीं गल करदे हाँ, इंडिया दे विच गल करदे हाँ, बहुत सारे देशों दे विच खास करके इहो जिहियां कारगुजारियां कीतियां जांदियां ने तां कि इन्हां स्पीशीज़ नूं बचाया जा सके, इन्हां प्रजातियां नूं बचाया जा सके, तां कि साडा ईकोसिस्टम जिहड़ा है उह वधिया कारगर तरीके दे नाल चलदा रहे और असीं अपनी जिंदगी नूं सोहणे तरीके दे नाल बसर कर सकीए।
1: सो प्यारे बच्चे, इन्हां नूं बचा किवें सकांगे, इन्हां नूं वधा किवें सकांगे, जदों असीं इस ईकोसिस्टम नूं बना के रखांगे। इन्हां जंगल इन्हां दा खूबसूरत घर ने, सो सानूं उस नूं कदे भी उजाड़ना नहीं चाहीदा तरक्की दे नाम दे उत्ते। प्यारे बच्चे, गल्लां चलदियां पईयां ने नॉलेज टाइम दियां, और नॉलेज जिंदगी दे विच बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जिहड़े जिहड़े भी लोग नॉलेज दा पल्ला फड़ के चलदे ने उह हमेशा अपनी कामयाबी दे झंडे जिंदगी दे विच गड़दे ही रहिंदे ने। और गल करिए जी 16 मई दी, तां 16 मई दा दिन सानूं याद कराउंदा है कि नैशनल डेंगू डे। और देखो, जिद्दां ही गर्मी आउंदी है मच्छर भी प्रगट हो जाते हैं, और मच्छर कितों आते हैं, साढ़े आले दुआले तो। एक मौसम है इन्हों का, और ये उस मौसम के पैदा हो जाते हैं, और खास करके वो वाले मच्छर बड़े खतरनाक ने जिहड़े ताजे पानी के उत्ते पैदा होंगे ने, जिन्हों डेंगू वाले मच्छर कहा जाता है। और डेंगू जदों किसी नूं गुरप्रीत हो जाता ना तो बड़ा औखा करता। प्यारे बच्चे, सावधानी सब तो वधिया हल है। जे असी अपने आले दुआले साफ रखांगे, पानी किते नहीं खड़ा होण देंगे, जे घर दे विच किते मच्छर है तां स्प्रे कीते जा सकदे ने, साफ सफाई की जा सकती है, और इहदे नाल डेंगू ते कंट्रोल भी किया जा सकता है। सो प्यारे बच्चे, मच्छरां दे नाल मरन वालियां दी संख्या दुनिया दे उत्ते बहुत ज़्यादा है, और इस करके ये अवेयरनैस भी स्प्रैड की जाती है कि इन्हां मच्छरां नूं कदे भी लाइटली ना लो।
0: जी बिल्कुल, प्रोग्राम खत्म करन तो पहला आखरी नॉलेज टाइम दा दिन जड़ा है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आर्म्ड फोर्सेस डे। सानू पता होना चाहिए कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स सारियां ही सेवावां बलिदान अते हिम्मत दे नाल हमेशा ते हमेशा जिहड़ियां ने वो डटियां हुई ने हद्दां सरहद्दां दे उपर, और एक सलाम जरूर तो जरूर बनता है, सल्यूट जरूर तो जरूर इन्हां नू बनता है। वख वख देशों दे विच एक खास दिन वख वख दिनां दे विच मनाया जाता है। जदों असीं भारत की गल करते हैं तो तीजे शनिवार को यह दिन जड़ा है जरूर तो जरूर मनाया जाता है। साडा भी फर्ज बनता है कि साडे आले दुआले कोई भी परिवार अजिहे ने जिहड़े कि खास करके इन्हां आर्म्ड फोर्सेस दे नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दा रिस्पैक्ट, उन्हां दी कदर करना साडी जिम्मेवारी बनदी है, और उन्हां नूं अपनी जिंदगी दे विच सही तरीके दे नाल विचरन दे लई कोई भी मुश्किल आउंदी है ते सानूं उस तरीके डट के खड़े हो जाना चाहिए जिवें कि उन्हां दे बच्चे, उन्हां दे परिवारक मैंबर हद्दां सरहद्दां ते साडे लई डटे हुए ने।
1: लो जी प्यारे बच्चे, नॉलेज टाइम का सिलसिला इत्थे ही मुकदा है, और बाल जगत नू भी हुण असी वाइंड अप करन वाले हाँ। पर उस तो पहला तुहानू अपना नंबर दस दईए जिहदे उत्ते सानू तुहाडियां खूबसूरत वालियां रिकॉर्डिंग का इंतजार रहेगा। सो नंबर कर लो जी नोट, कापी पेन चुको या अपने स्मार्टफोन दे उपर कर लो। नंबर है जी साडा 8284851799, यानी 8284851789, और इस नंबर दे उत्ते सानू तुसीं अपनियां रिकॉर्डिंग भेज दिओ। और हुण गुरप्रीत और सुखदीप नूं दिओ इजाजत इस वादे दे नाल कि अगले हफ्ते इसे टाइम इसे फ्रीकुएंसी दे उत्ते तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम लैके फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई जय।

0: समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखिरी तारीख।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: आंखों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। BJP ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम TV के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी TV के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री N रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

जीवन मृत्यु दे इस गीत बाद आप सुन रहे हैं अगला गीत, लता मंगेशकर ने सुन रहे हैं, फिल्म है विदाई।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में तंदुरुस्त नौजवानों की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने सवेरे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वरेगंढ समारोह में हिस्सा लिया। तमिलनाडु में तमिलका वेत्री कड़गम के संस्थापक श्री जोसफ विजय ने सवेरे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी। आसाम च सीनियर बीजेपी नेता डॉ हिमंत बिस्व सरमा पार्टी विधायक दल के नाल एनडीए विधायक दल का नेता चुनिया गया। सिक्ख्या मंत्रालय गर्मियों की छुट्टियों दौरान देश भर के सारे स्कूलों में भारतीय भाषा समर कैंप 2026 कराएगा। तीरंदाजी में भारत की औरतों की रिकर्व टीम ने शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप पड़ाव में सोने का तमगा हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज सवेरे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वरेगंढ समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग अंतरराष्ट्रीय केंद्र विखे नवे बड़े ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इकट्ठ को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री ने सेवा अध्यात्म के समाजिक तब्दीली उत्साहित करने में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की शलाघा की। उन्हां चुगिरदे प्रति जिम्मेवारी नौजवानों के शक्तिकरण ते अंदरूनी तंदुरुस्ती राही विकसित भारत के निर्माण लई समूहिक यतना दा सद्दा भी दिता। उन्हां कहा कि विकसित भारत के निर्माण च तंदुरुस्त नौजवानों की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: बेंगलुरु बारे गल करदे हैं, प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु दिया प्राप्तियां दी शलाघा की थी।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
0: आज बाद विच प्रधानमंत्री हैदराबाद यात्रा करेंगे ते हैदराबाद विच करीब 9400 करोड़ रुपए के कई विकास प्रोजेक्टों का नींव पत्थर रखेंगे ते उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक लांघे ते गोडे बेलूर तो महबूब नगर तक चार मार्गी राष्ट्रीय शाहराह नंबर 167 का नींव पत्थर रखेंगे, जिसकी कुल प्रोजेक्ट लागत 3175 करोड़ रुपए तो वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल, असाम ते पुडुचेरी विच भाजपा की जित उन्हां दी सरकार वल्लों लागू की गई राष्ट्र नीति लई जनतक हमायत का प्रमाण है। उन्हां कहा कि चोण नतीजे राष्ट्र दे रुख नूं दर्शाउंदे ने जो उन्हां दी सरकार दे राष्ट्रीय प्रोग्रामां ते नतीजिआं दी हमायत करन वाले जनतक संदेशां दा संकेत दित्ते ने। अज बेंगलुरू विच भाजपा वर्करां नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने एक अजिही सरकार की जरूरत ते जोर दिता जो काम करती है, जो तेजी नाल चंगा शासन प्रदान करती है ते हल प्रदान कर दिए ते देश नू आगे ले जांदी है।
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें पीड़ चाहिए, हमें गेम नहीं सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है।
0: तमिलनाडु में तमिला वेत्री कड़गम टीवीके के संस्थापक श्री जोसफ विजय ने आज सवेरे मुख्यमंत्री वजो सहुं चुक समारोह सवेरे 10 बजे नेहरू इंडोर स्टेडियम में होया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने श्री विजय नूं अहुदे ते सरकारी भेद गुप्त रखण की सहुं चुकाई। उन्हां दे नाल नौ मंत्रियों नूं भी सहुं चुकाई गई। कैबिनेट मंत्रियों वजों सहुं चुकण वाले विच के जी अरुण राज, आधव अर्जुन, एन आनंद सेलवी, एस कीर्तना ते डॉक्टर टी के प्रभु शामिल सन। सहुं चुक समारोह विच राहुल गांधी अते तमिल फिल्म सनत दियां कई शख्सियतां मौजूद सन। श्री विजय ने कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके अते आईयूएमएल दी हमायत नाल 234 मैंबरी सभा विच 120 चुने हुए विधायकां दी हमायत प्राप्त की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज तिरुसी जोसफ विजय नूं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वजों सहुं चुक कटते बधाई।

ते हुए वजीर आजम ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने पार्लियामेंट में नारी वंदन संशोधन बिल के खिलाफ वोट देकर ख्वातीन को धोखा दिया है, जबकि इसमें पार्लियामेंट में ख्वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन को यकीनी बनाने की बात कही गई थी। वजीर आजम ने लोगों से अपील की कि वो मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और अमरीका ईरान जंग जैसे जुग्राफियाई और सियासी हालात व वाकयात से पैदा चैलेंजों पर उबूर हासिल करने के लिए मुत्तहिद रहें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब हैदराबाद जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी वारंगल में पीएम मित्र पार्क का इफ्तिताह करेंगे, जिसे काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और जिसे पीएम मित्र स्कीम के तहत तैयार किया गया है। जनाब मोदी सिंधु अस्पताल को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। ये इदारा हैदराबाद में बनाया गया कैंसर के लिए मखसूस जदीद तर्ज का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हिफ्जान सेहत मरकज है, जो किसी मुनाफे के बगैर काम करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी के बानी जोसेफ विजय को आज सुबह वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर ने नेहरू इंडोर स्टेडियम में एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। उनके हमराह 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। हलफबरदारी की तकरीब में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और तमिल फिल्म सनत से वाबस्ता कई सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। जनाब जोसेफ विजय ने तारीख रकम की है। हालिया असेंबली इंतखाबात में पहली बार चुनाव लड़ने वाली उनकी पार्टी टीवी के वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 1967 के बाद से वो रियासत के ऐसे पहले वजीर आला बने हैं जिनका ताल्लुक न तो डीएमके से और न ही ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से है। जनाब जोसेफ विजय को कांग्रेस वीसीके सीपीआईएम सीपीआई और आईयूएमएल की हिमायत के साथ 234 रुकनी ऐवान में 120 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है। लोकभवन के एक अखबारी बयान के मुताबिक गवर्नर मौसूफ ने वजीर आला जोसेफ विजय को हिदायत दी है कि वो बुध के रोज या उससे पहले असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने पर जोसेफ विजय को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार आवाम के रहन सहन को बेहतर बनाने की खातिर तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके ने टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय को तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के फौरन बाद मुबारकबाद पेश की। आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी के साथ साथ एनडीए कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में मजमूई तौर पर पार्टी के 8 अरकान असेंबली ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा का नाम तजवीज किया। वहां मौजूद दीगर अरकान असेंबली ने इसकी तायीद की। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीरे सनत संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। गुरुग्राम में काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक पीएमएलए की एक खसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कार्रवाई की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि मगरबी एशिया में भी कशीदगी जल्द दूर हो जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये तंबीह भी की है कि अगर टकराव में इजाफा होता है तो सभी फरीकों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने गुजरात और राजस्थान में कल तक शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक शुमाल मगरबी भारत में भी अगले 7 दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में रफ्ता रफ्ता 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने का इम्कान है। चीन के शहर शंघाई में जारी तीरंदाजी के आलमी कप के दूसरे मरहले में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोद पर मुश्तमिल भारतीय ख्वातीन की रिकर्व टीम ने आज एक ड्रामाई शूट ऑफ के बाद मेजबान चीन को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के

0: वजीर सनात संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। और तीरंदाजी वर्ल्ड कप में शंघाई में भारतीय ख्वातीन की रिकर्व टीम ने शूट ऑफ में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨੂੰ, ਫਿਲਮ ਹੈ ਸੁਹਾਗਨ।

0: तो सुन रहे से फिल्म सुहागन दा गीत आवाज से मोहम्मद रफी दी।
1: मूर्खा सुधर जा।
2: पेमेंट्स ले कोई ओपन वाईफाई नहीं,
3: मतलब धोखा तड़ी नू बाय बाय।
2: RBI कहता है
1: करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय तौर ते स्मार्ट।
0: ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਸੀ ਸੁਹਾਗਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਲਮ ਹੈ ਮੁਕਤੀ।

0: ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੇਰਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

0: ஸ்ரீ ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी. इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं. राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा. नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की.
2: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा. बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया. इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया. निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की. 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया. एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा. राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी.
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं.
3: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा. सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे. आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले. आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई. मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे. सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए. आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं. नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं. ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा. 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें. शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा. एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति

0: की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी विन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला MV होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब

चंदू सवाई ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नू तत्तियां तवियां ते बिठा करके शहीद कर दिता है। इस शहादत ने इस दुनिया ते नवा रंग लैण दा नवा मोड़ लैण दा जो अज भी साडी कौम दे परवाने हस हस के इस मौत लाड़ी नू प्रवान करदे ने उन्हां लैणां नू प्रीतम सिंह बठिंडे वाल दा ढाडी दिता है। क्यों बयान कर रहा बई?

0: एसी प्रोग्राम रंगली धरती।
1: दीदी
2: हाँ?
1: देखो
2: हैप्पी सोलवा बर्थडे।
1: दिखा, वाह मेरा फेवरेट कलर।
2: हमेशा शॉपिंग
1: जानदा हमा, खर्चे करन दी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करन दी भी यही उम्र है।
4: पता है बापू, सेव करो, सही थां ते निवेश करो, मूल रकम ते ब्याज मिलेगा, जिसनु दोबारा निवेश करन ते ब्याज मिलता रहेगा।
1: मैनू पता है ना।
4: आरबीआई कहिंदा है,
5: करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय तौर ते स्मार्ट।
0: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से इस समय दिन के 3 बज रहे ने। साड़ी सभा हुण समाप्त हुंदी है ते अगली सभा नाल जुड़ांगे शाम 4 बजे। तद तक सानू आग्या दिओ। धन्यवाद।
6: नमस्कार, DTH डेयर पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। इस वक्त 3:06 हो चुके हैं तो समय हो रहा है न्यूज़ हेडलाइंस का।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण च तंदुरुस्त नौजवानों की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने आज सवेरे बेंगलुरु विच आर्ट ऑफ लिविंग दे 45वें वरेगंढ समारोह विच हिस्सा लिया। तमिलनाडु विच तमिलगा वेत्री कड़गम के संस्थापक श्री जोसफ विजय ने आज सवेरे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी। असाम च सीनियर बीजेपी नेता डॉक्टर अहमद बिस्वा शर्मा नूं पार्टी विधायक दल दे नाल नाल एनडीए विधायक दल दा नेता चुनिया गया। गुरुग्राम दी एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच पंजाब दे सनत मंत्री संजीव अरोड़ा दा इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट नूं 7 दिनां दा रिमांड दे दित्ता है। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान ने गरीबां ते लोड़वंद परिवारां नूं पौष्टिक खुराक मुहैया करवाउण लई राशन किट वंड के मेरी रसोई स्कीम दी शुरुआत कीती। पंजाब च खरीद रुत दौरान कणक दी आमद अते खरीद दोवां पक्खों 122 लख मीट्रिक टन दा आंकड़ा पार कर गया। पंजाब राज कानूनी सेवावां अथॉरिटी वालों सूबे भर विच कल लाई गई दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत राही 4,68,633 केसां दा निपटारा कीता गया। सिक्ख्या मंत्रालय गर्मियां दीआं छुट्टियां दौरान देश भर दे सारे स्कूलों विच भारती भाषा समर कैंप 2026 कराएगा। तीरअंदाजी विच भारत दी औरतां दी रिकर्व टीम ने अज शंघाई विच तीरअंदाजी विश्व कप पड़ा 2 विच सोने दा तमगा हासिल कीता है। एसी हुण तक दी न्यूज़ हेडलाइंस। ते हुण समा हो रहा है चिट्ठियां मिठियां दा। हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल तुहाडे। मैं आरजे पूनम सेठी इस वक्त तुहाडे नाल जुड़ चुकी हाँ प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां दा। मैं आरजे पूनम सेठी तुहाडा सारयां दा तहे दिल तो स्वागत करदी हाँ प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। हाँ जी दोस्तों, तुहाडियां चिट्ठियां मेरे हाथ विच ने, एक एक करके पढ़ांगी ते तुहाडे गीतां दी फरमाइशां नूं जरूर पूरा करांगी। कुछ जानकारी तुहाडे नाल सांझी भी करांगी ते कुछ दिल दीआं गल्लां भी करांगी। ते हुण आपां चिट्ठियां पढ़दे हाँ। चिट्ठी आई है मलोट तो जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, गैवी गिल, अमन गिल, सुखबीर सिंह छाजली तो। कुछ होर सज्जन मित्र भी ने, उन्हां दे भी नाम लिखे ने। पिंड बुरज सिद्धवा मलोट तो सरबजोत सिद्धू, अविताज सिद्धू ते जगतार जग्गा तौला किंगरा तो। फिर चिट्ठी आई है मुल्लापुर मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, शीश शर्मा, बिट्टू जैन, दीपक जैन। फिर पुरानी मंडी मुल्लापुर तो राजेश जैन, अरुणा जैन, गौतम जैन, रसगुल्ला जैन, नगीना जैन। ते मंडी अहामा अहमदगढ़ी तो बिट्टू राजा, नरिंदर शर्मा, सविता शर्मा, पुष्कर शर्मा, खनिश शर्मा ते जे बी राव, बुलबुल राव वालों चिट्ठी आई है। फिर करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पूछो कैंचियां तो प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर ते सिमरन, कुलदीप कौर, एकम, दमन, अभिजोत। इन्हां सारिआं ने ही पंजाबी गीत नूं सुणन दी इच्छा रखी है। इस तों इलावा जिन्हां ने सानूं चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी आई है पिंड कुड़ियाना जिला फाजिलका तो पंजाब तो श्री सरदार मलकीत सिंह कुड़ियाना, मनजीत कौर बठिंडा, दपिंदर सिंह चेयरमैन, पोता गुरशबद सिंह, जीत सिंह कुड़ियाना, दर्शन सिंह साबका सरपंच, समूह बराड़ परिवार ते दोस्त कुलवंत मलोट वालों चिट्ठी आई है। इन्हां सारिआं दी ही मिली जुली फरमाइश ते असीं तुहानूं एक गीत सुणाउण जा रहे हां। गीत तां बहुत ही खूबसूरत गीत है, बलकार सिद्धू दी आवाज़ विच फुलकारी गीत आपां सुणांगे। ए गीत दी फरमाइश आई है पिंड लोहगढ़ ठाकरां वाला फिरोजपुर तों। भेजण वाले ने सुवर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरमान सिंह पोत्र।

हाँ जी दोस्तों, समा होर इजाजत नहीं दे रहा, तुहाडे सारिआं तों विदा लैण दा टाइम हो चुका है। मैं आरजी पूनम सेठी तुहानूं अगले रविवार या किसी होर रविवार जरूर मिलांगी। तुहानूं सारिआं नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल ते नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये है जलंधर केंद्र, प्रस्तुत है साहित्यिक पत्रिका परिमल। आप सबका अभिनंदन। आज के इस अंक में आप सुनेंगे एक परिचर्चा, विषय है कृत्रिम बुद्धिमता एवं हिंदी साहित्य। प्रतिभागी हैं प्रोफेसर सोमनाथ शर्मा, डॉक्टर पूनम महाजन एवं डॉक्टर नीलम सेठी।
1: आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर और ज्वलंत विषय है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं हिंदी साहित्य यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे दो महान विभूतियां, शिक्षा के जगत में बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाने वाली डॉक्टर पूनम महाजन, हमारे दरमियान डॉक्टर मिस नीलम सेठी जो पूर्व प्राचार्य हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मैडम पूनम जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी में कहते हैं, ये क्या चीज़ है? हमारे जितने भी श्रोता हैं उन तक ये बात पहुँचे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या?
2: आदरणीय, आज इस विषय पे मैं, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं उस पर मैं बात रखना चाहती हूँ। मुद्दा उठा है कृत्रिम मेधा है क्या, बुद्धिमत्ता है क्या। ये कंप्यूटर विज्ञान का एक टूल है। आज का युग है वो तकनीकी नवाचारों का युग है, और ये बात अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि विभिन्न डिजिटल माध्यम है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इंटरनेट का व्यापक प्रचार प्रसार है, और इसने मानव जीवन की कार्य प्रणाली पर बहुत प्रभाव डाला है। उसकी सोच विचार के ऊपर भी इसने अपनी पकड़ रखी है, और उसने ज्ञान को भी प्रभावित किया है। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि नवाचार जब आता है ना, तो सदैव व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो ये एक मिश्रित रूप लेके आता है परंपरा का और आधुनिकता का। तो सीधी सी बात है, जब नवाचार आएगा, व्यवहार बदलेगा, तो व्यक्ति प्रभावित होगा। जब व्यक्ति प्रभावित होगा तो समाज प्रभावित होगा, और जब समाज प्रभावित होगा तो साहित्य पर प्रभाव पड़ना
3: स्वाभाविक है,
2: लाजमी है, स्वाभाविक है। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिकता और परंपरा का समन्वय निबंध लिखा था, तो उन्होंने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो एक पैर से चलता है और एक पैर से खड़ा रहता है, और यही आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय ज्ञान का समन्वय जो है ये हमारी पकड़ में है, इसी के ऊपर हम आज काम कर रहे हैं। अब बात आती है, आप कह रहे हो AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसने कैसे प्रवेश कर लिया, कैसे हमारे उसमें आ गया। कहते इसने नए नए विचार दे दिए, नई नई कथानक की संरचना दे दी, नए नए शीर्षक के सुझाव दे दिए, बहुत कुछ दिया। लेकिन मैं यहाँ पर पहले ही कह देना चाहती हूँ कि वो कागज़ की रगों में धड़कने भर नहीं सकता। वो सब कुछ कर सकता है मगर वो मर नहीं सकता। मशीनें छीन लेंगी शायद सारे लफ्ज दुनिया के, मगर जो अश्क आंखों में है वो तर नहीं सकता।
3: सही,
1: बहुत अच्छी बात।
3: सही,
1: बहुत अच्छी बात,
3: बहुत ठीक।
1: और जैसा कि हम जानते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी ये दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट हुआ था 2026 में।
3: हाँ जी।
1: और 16 फरवरी

0: से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एआई कार्यक्रम हुआ। इतना प्रभावशाली हुआ कि उसको एक दिन के लिए लोगों की मांग पर और बढ़ा दिया गया। और आज जब भारत की हम बात करते हैं, डिजिटल भारत की बात करते हैं, तो वहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में ये बात कही, ये जो एआई है इसको मानव केंद्रित होना चाहिए। ये क्योंकि हमारी जो धरातल है, हमारी जो पृष्ठभूमि है, हमारा जो भारत है, इसकी एथिकली इसका संबंध होना चाहिए, नैतिकता से संबंध होना चाहिए। क्योंकि जो भी एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चल रही है, तो उन्होंने इस पर विशेष बल दिया, जिसमें लगभग बहुत सारे 100 देशों के प्रतिनिधियों से इसमें सम्मिलित हुए। उन्होंने इस विषय पर बड़ी विस्तृत चर्चा की। और इससे पहले भी भारत के बहुत सारे जो प्रदेश हैं, जैसे मेघालय है, राजस्थान है, गुजरात है, इसमें इसके सम्मेलन हुए, ताकि जो हम इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं उसके कोई उसमें कोई त्रुटि न रह जाए।
1: सही
0: विश्लेषण
1: सही
0: हुआ,
1: सही
0: विवेचन हुआ, और इसका असर जो था, उन्होंने जैसे कहा कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो 6th से लेकर या 10th से लेकर जो 12th तक के बच्चे हैं, उनको एआई की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इस विषय पर एक बहुत गंभीर चिंतन हुआ और पूरा भारतवर्ष इसको मानने के लिए तैयार है। तो इसके माध्यम से बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, संभावनाएं भी हैं, फायदे भी हैं, इसके बहुत सारे उद्देश्य भी हैं। इन पर बातचीत करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी
1: जी,
0: है।
1: बहुत जरूरी हो गया है।
0: और जैसे कि एक पर्यावरण है,
1: हाँ
0: जैसे
1: जी,
0: मैडम आप थोड़ा से ये बताएं कि जितनी भी हमारा जो पर्यावरण है, शिक्षा है, चिकित्सा
1: हाँ जी,
0: है,
1: हाँ जी,
0: वाणिज्य
1: हाँ जी
0: है ना, जितनी भी हमारे एस्पेक्ट हैं,
1: जी
0: इन पर ये बहुत बड़ी एआई जो है प्रभाव डाल रही
1: जी
0: है, यानी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है
1: हाँ
0: उसका
1: जी
0: बहुत बड़ा एक असर है। आप इसके
1: हाँ
0: बारे
1: जी
0: में क्या कहेंगे?
1: सोमनाथ जी, मेरे ख्याल से पूनम ने काफी विस्तार कर दिया है एआई का। अब मैं इसको हिंदी साहित्य के साथ जोड़ूं, क्योंकि हमारा विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हिंदी साहित्य, विशेष
0: जी
1: विशेष हिंदी साहित्य।
0: हाँ
1: तो यहां से भी पूनम ने बात की थी, मशीनी बुद्धि में भावना कहाँ से लाएंगे?
0: हाँ बहुत अच्छी बात है
1: ये
0: कि
1: बड़ी अच्छी बात
0: भाव।
1: मुझे लगी थी,
0: हाँ
1: संवेदना कहाँ से लाएंगे?
0: बिल्कुल सही बात
1: हाँ
0: कह
1: जी,
0: रहे
1: एक लोहे के पुर्जे में, वो पता है क्या है जी, वो तो एक हांडी है, एक हांडी है, हमने भरी है, वो इंसान निर्मित है। वो जो हमने उस पुर्जों में, एक तो डेटाबेस भर दिया हमने सारा उसमें, फिर हमने क्लाउड में वो स्टोरेज कर दी है सारी जी, फिर उसको विश्लेषण की हमने क्षमता दे दी है जी सारी, फिर हमने उसको एल्गोरिदम दे दिया है
0: जी
1: गणित वाला जी।
0: जी
1: उससे वो क्या करता है, उसके तो जो कुछ अंदर पड़ा हुआ है ना,
0: जी
1: वही उसने क्या करना, सदियों पुराने डाटा भी उसने निकाल लेने हैं वहां
0: जी
1: से, है ना जी। अपने जो उसके पास एल्गोरिज्म की क्षमता है,
0: जी
1: विश्लेषण की क्षमता है, उसने उन डाटों का विश्लेषण कर देना सारा, और
0: जी
1: जो चीज़ आपने मांगनी है उसको नवीकरण करके उसने पेश कर देना। तो
0: जी
1: आपने नैतिकता की बात की थी, नैतिकता तो सही, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है जी, है ना जी। तो इंसान के अंदर जो भावनाएं होती हैं, मोटी मोटी भावनाएं तो वो पकड़ लेगा, एआई पकड़ लेगा। आपने कहा हर्ष पर मुझे एक कविता लिख दो जी, खुशी पर, खुशी पे आ जाएगी, है ना जी। आपने कहा विषाद पे लिख दो जी, विषाद पे आ जाएगी। चलो अब वो अपना सारा डेटाबेस निकाल लेगा, विश्लेषण कर देगा, क्लाउड स्टोरेज से निकाल लेगा, जो कुछ उसके पास धरा पड़ा उस हांडी में, जो हांडी में वही तो वो चम्मच में से निकलेगा। तो उसमें मानव की सूक्ष्म भावनाएं कहाँ हैं? और साहित्य तो कोई एक चीज से नहीं बनता है, हम जानते हैं कि बहुत सूक्ष्म भावनाओं से बनता है साहित्य, विचारों से बनता है साहित्य, भाषा की संरचनाओं से बनता है साहित्य, कल्पना से बनता है साहित्य, मनस्थितियाँ उसके अंदर होती हैं, वो बाहरी परिस्थितियों से उसको मिलाता है, पता नहीं कैसी कैसी वो जटिल संरचनाएं करता है कि आत्मा की बात जा आत्मा तक
0: बहुत
1: सीधी
0: अच्छा, बहुत
1: पहुंचती
0: अच्छा,
1: है।
0: बहुत
1: अब
0: अच्छा।
1: हाँ, जिसमें आत्मा है ही नहीं तो वो दूसरे की आत्मा तक कैसे पहुंचेगा, उसको कैसे छुएगा, ये मेरी समझ से बाहर है।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने की कि आत्मा की आवाज़ को जन जन तक
1: हाँ
0: पहुंचाना,
1: जी,
0: भावना को, नैतिकता को,
1: हाँ जी,
0: संस्कारों
1: हाँ
0: को,
1: जी,
0: समाज को, संस्कृति को, यानी पूरे विश्व पटल पर लाने का काम अगर कोई कर रहा है तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज कर रही है। लेकिन जो साहित्य है वो भी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। साहित्य में भावनाएं होती हैं,
1: हाँ जी,
0: बिना भाव के साहित्य
1: साहित्य
0: नहीं
1: नहीं हो ही
0: होता।
1: नहीं सकता,
0: तो
1: कविता तो
0: एक
1: बिल्कुल ही नहीं हो
0: मशीन
1: सकती।
0: साहित्य नहीं बन
1: नहीं
0: सकती।
1: जी
0: हम
1: जी
0: जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, तो उससे हम एक सामने हमारे सामने बात आती है कि ये जो हमारी भावनाओं को नजरअंदाज

0: रहा है, लेकिन
1: जी
0: आज ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपकी जो शैली है वो भी पढ़ने में सक्षम हो रहा है। लगभग 7200 के करीब, 7200 के करीब जो विश्व में भाषाएं
1: भाषाएं हैं
0: बोली जाती हैं, और उन भाषाओं को अगर सुरक्षित रखना है तो AI अपनी बहुत बड़ी भूमिका
1: हाँ
0: अदा
1: जी
0: कर
1: हाँ
0: रहा
1: जी
0: है।
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल
0: साहित्य की बात करते हैं तो, क्योंकि साहित्य में भावनाएं हैं, क्योंकि अगर हम कविता पढ़ाते रहें तो उसमें भाव और विचार होते हैं, हृदय और बुद्धि होती है, तो इसमें बुद्धि का समावेश तो है लेकिन भावना का समावेश नहीं है।
1: जी, बुद्धि भी
0: नहीं है।
1: कृत्रिम है
0: और जो बुद्धि है जो इसमें फीड किया जाएगा वही होगा,
1: वो। हाँ
0: लेकिन
1: जी
0: इसका
1: हाँ जी
0: ऐसा नहीं है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का फायदा नहीं है।
1: नहीं, फायदे तो
0: देखो
1: बहुत हैं,
0: मैं वही
1: फायदे तो
0: कह रहा हूं
1: बहुत
0: कि
1: हैं।
0: शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल है, चिकित्सा के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन है बहुत बड़ा रोल है, और जितने भी आपके टेस्ट होते हैं वो AI के माध्यम से
1: हाँ जी
0: होते हैं, है ना।
1: हाँ जी
0: और फिर पर्यावरण में क्या
1: हर
0: बारिश
1: जगह
0: होगी नहीं होगी, कैसा सूखा रहेगा, वो भी इसमें बड़ा
1: इसके बड़े सटीक
0: ड्रोन
1: अनुमान
0: के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ना इसकी। तो यही कृत्रिम बुद्धिमत्ता हर क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है, और साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं, देखो साहित्य को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका है।
1: है जी, इससे
0: जो हमारी जितनी भी पांडुलिपियां
1: कोई
0: हैं,
1: नकार नहीं सकता इस
0: वो
1: बात
0: जितनी
1: को।
0: भी
1: हाँ
0: हमारी पांडुलिपियां
1: जी
0: हैं उसको सुरक्षित रखने में बहुत
1: हाँ
0: बड़ा
1: जी हाँ जी
0: रोल अदा कर रही है। और भावना, जहां तक हम भावना की बात करें, मैडम ने भी बात कही कि ये भावों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आप इस भावना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे मैडम?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ लिख सकता है। मैडम ने कहा हर्ष पे कविता लिख दो, वो लिख देगा, लेकिन वो विद्रोह कहाँ से लाएगा जो कबीर के दोहों में झलकता है, वो पीड़ा कहाँ से लाएगा जो महादेवी की कविताओं में है, वो दर्द कहाँ से लाएगा जो स्रोत स्मृति में निराला ने दिखाया था। धन्य मैं
0: पूनम,
1: पिता निरर्थक का,
0: हाँ,
1: तेरे
0: मैं
1: हित कुछ
0: आप
1: कर न
0: करना
1: सका,
0: जी जी
1: जाना तो अर्थ गम
0: हाँ
1: उपाय पर रहा सदा
0: हाँ हाँ
1: संकुचित काय। महादेवी जी कहती है मैं नीर भरी दुख की
0: दुख की
1: बदली,
0: बदली, हाँ,
1: विस्तृत नभ का कोई
0: कोई को
1: कोना
0: ना मेरा
1: मेरा
0: ना
1: न कभी
0: कभी अपना
1: अपना होना।
0: होना।
1: तो ये वाला दर्द उसमें नहीं
0: हाँ
1: झलक पाएगा,
0: अच्छा,
1: शैली को पकड़ेगा लेकिन ये दर्द वो नहीं ले पाएगा। यही इसीलिए कहती हूँ कि इसको आप सहायक उपकरण के लिए यूज कीजिए,
0: सही,
1: उसका प्रयोग कीजिए, विकल्प मत बनाइए,
0: बहुत बहुत इसको उपकरण के रूप में प्रयोग करें,
1: विकल्प मत बनाइए,
0: ठीक है, बहुत
1: इसको
0: अच्छी बात है,
1: लेखक ना बनाइए, लेखनी का सहायक बनाइए।
0: सहायक बनाए, बहुत अच्छी बात कि इसको लेखक ना बनाए,
1: लेखनी का
0: लेखनी का सहायक
1: सहायक बनाइए।
0: बनाए।
1: हाँ जी,
0: तो
1: इसी में
0: मैडम
1: मैं कहना चाहती हूँ कि हम देखो जी, ये तो एक ऑटोमेटिक पायलट है,
0: जी,
1: स्वचालित चालक
0: चालक
1: है,
0: है, हाँ जी,
1: इसके हाथ में जहाज पकड़ा देंगे तो फिर तो वो दिशा ही नहीं जाएगा,
0: बहुत अच्छी बात है,
1: है ना
0: बहुत अच्छी
1: जी।
0: बात, बहुत
1: हम
0: अच्छी बात
1: जहाज
0: मैडम
1: अपने हाथ में रखें,
0: जी।
1: चालक खुद बने रहे, उसे सह चालक के रूप में बिठा लें, जिस तरह साहित्य में बहुत सारा फायदा उससे हो भी सकता है। आज नए नए रचनाकार हैं, बड़ा फायदा ले भी रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: AI का बहुत बड़ा फायदा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ले भी रहे हैं, नई नई शैलियां उसमें से ढूंढी जा सकती हैं, विषय चयन, भाषा, हाँ जी विषय चयन, इतनी दुनिया, इतने विषय हैं, पहले तो इतने विषय नहीं होते थे, अब तो विषयों का कोई अंत ही नहीं है क्योंकि सारा ग्लोब एक दुनिया एक गांव बन चुका है। तो नए नए विषय आप वहां से उठा सकते हैं। और मजेदार बात देखिए, अब जैसे मान लो मैं कोई उपन्यास लिखना चाहती हूँ तो, लेकिन उसमें मैं कोई युद्ध वर्णन देना चाहती हूँ, तो मैंने तो युद्ध आंखों से देखा कोई नहीं, तो उसके कोई वर्णन शर्णन कोई वहां से बिल्कुल बिंबात्मकता, कोई इमेजिनरियां इमेजरीज कुछ ना कुछ आप वहां से स्टडी कर सकते हैं, लेने वाली चीजें लीजिए, लेकिन उसके हाथ में आप वो हैंडल ना पकड़ा दीजिए
0: ये
1: कि तुम करो,
0: बहुत अच्छी
1: उससे
0: बात
1: ना
0: आपने
1: होगा,
0: की कि
1: उससे ना होगा।
0: जो बिंब विधान साहित्य में
1: हाँ जी
0: एक साहित्यकार चित्रित कर सकता है, जो बिंब विधान ले
1: हाँ जी
0: सकता
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: वो हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से नहीं ले सकते। जो भाव, जो पीड़ा, जो करुणा, जो वेदना, जो दर्द, जो एहसास
1: हाँ जी हाँ जी
0: एक भावुक व्यक्ति जो है चित्रित कर सकता है,
1: वो
0: वो
1: नहीं कर सकते,
0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के
1: नहीं कर
0: माध्यम से हम
1: नहीं कर
0: नहीं कर
1: सकते।
0: सकते।
1: सोमनाथ जी आप याद करिए कि वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक, और पहला ही श्लोक जिसको पहली कविता भी कह देते हैं
0: बहुत अच्छी बात,
1: संस्कृत की, मान निषाद प्रतिष्ठाम तम गमय शाश्वती समा यत क्रौच मिथुन मिथुनाथ एकम वधि काम मोहितम। दर्द से ही शुरुआत हुई है सारी कविता की, दर्द से क्रौच प्रेम प्रणय में मग्न थे, बीच में से जोड़े में से एक को एक
0: मारा,
1: मार दिया,
0: तो जो वाल्मीकि के मन से उभरा वो पहली कविता बनी, रामायण का पहला श्लोक
1: पहला
0: वो
1: श्लोक,
0: बना है देखा जाए तो। और निराला ने कहा भी है मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, जी
1: दुख की पीड़ा पड़ी हृदय पर, झट उमड़ वेदना आई। और पंत ने भी यही कहा भी योगी होगा पहला कवि, आह से उपजाऊ।

0: होगा गान, है ना, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी
1: जी
0: कविता अनजान। तो
1: जी
0: ये तो जब भावों का उद्वेलन होता है, कविता है और साहित्य का तो जन्म ही वहां से हुआ
1: बहुत अच्छी
0: सारा।
1: बात कि ऋषि वाल्मीकि ने जब वाल्मीकि रामायण लिखी तो उसमें एक जो पीड़ा थी
0: हाँ
1: उनके मन
0: जी,
1: में आई
0: उसी ने
1: एक
0: जन्म दिया
1: पक्षी को देख करके,
0: जी
1: और उसी पीड़ा के माध्यम से ही उन्होंने एक बहुत बड़े महाकाव्य की, बहुत बड़े ग्रंथ की,
0: जी
1: वाल्मीकि रामायण की जिसके नाम से जाना जाता
0: जी
1: है, उसकी रचना कर रहा थी। तो वो पीड़ा, वो दर्द, वो एहसास, वो करुणा, वो वेदना अगर किसी में है तो वो साहित्यकार के हृदय में है। और साहित्यकार का हृदय कहाँ से लेंगे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से?
0: बिल्कुल
1: और जैसे आपने कहा कि इसको एक उपकरण के रूप में प्रयोग करें, विकल्प के रूप में प्रयोग करें, ऐसा नहीं कि उसको लेखक बना दें, तो लेखक तो वो बन नहीं सकती, लेकिन लेखन में सहायता जरूर कर सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है पूनम जी आपने कही। तो आप इसके बारे में और कुछ विस्तृत हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको जानकारी दें।
0: अभी यहां बैठे बैठे मेरे मन में कुछ पंक्तियां आई हैं। कहते लफ्जों से खेलना भी कहाँ आसान है, हाँ जी,
1: रूह
0: बहुत
1: से
0: अच्छी, लेके कलम तक का सफरनामा है ये।
1: वाह वाह वाह,
0: हाँ
1: बहुत अच्छी
0: हाँ
1: बात
0: है ना, तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नहीं हो सकता,
1: है।
0: बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि लेखक का अनुभव बोलता है, लेखक के पुरखों का अनुभव बोलता है, लेखक का संघर्ष बोलता है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नहीं है। मशीन कहाँ से लाएगी वो
1: पर
0: अनुभव?
1: सोशल मीडिया जो आया है, इसने साहित्य के अस्तित्व को एक नए कलेवर में डाल दिया।
0: जी
1: जो पहली सीढ़ी पर अभी लेखक खड़े हैं ना, उनको जब मंच नहीं मिलता वो सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो वहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहारे से या उसकी सहायता से वो अपने लेखन में सुधार करते हैं। ये हमें एक बहुत बड़ा, ये कह सकती हूँ कि हमें उपलब्धि प्राप्त हुई है। जो नई पीढ़ी के लेखक आ रहे हैं ना, चाहे हम उन्हें ये कहें कि इन्होंने नकल किया, वो नकल नहीं है, उनको एक आश्रय मिला है, एक ये कह सकते हो कि उनको एक ड्राफ्ट मिल गया कि इसमें हमने रंग भरने हैं। तो ये सोशल मीडिया वाला जो मेरे सामने आया है, जिसको मैं समझ सकती हूँ या मैं जो कहना चाहती हूँ।
0: पुनः
1: हाँ
0: पर
1: जी,
0: रचनात्मकता का क्षरण न होने दे, एक बात तो पक्की है ना।
1: ये
0: हाँ,
1: तो यही
0: पॉपुलर
1: तो
0: होने के माध्यम के लिए कि डिजिटल डिजिटल आई जा रहा है
1: नहीं,
0: सारा।
1: कहीं कहीं अगर आप समझो तो ये देखिए कि लेखक की अपनी लेखनी का भी यहाँ पे नुकसान हो रहा है।
0: वो तो
1: लेखक
0: पहले
1: खुद
0: होगा,
1: लिखता है,
0: वो तो
1: खुद
0: पहले
1: अच्छा भी
0: होगा।
1: लिखता है,
0: हाँ जी,
1: लेकिन अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो
0: हाँ
1: वो चैट जीपीटी पे या जेमिनाई
0: हाँ
1: पे डालता है, इसको करेक्ट कर दो। बहुत अच्छी बात आपने की
0: हाँ जी,
1: कि इसमें मौलिकता का, नैतिकता का,
0: रचनात्मकता का
1: रचनात्मकता का,
0: क्षरण हो जाएगा। हाँ
1: सृजनात्मकता का
0: हाँ
1: अभाव है ना। इस अभाव को पूरा नहीं कर सकता, कर सकती कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और इसलिए हमें मौलिकता को लेना है, सृजनात्मकता को
0: को
1: लेना
0: लेना है,
1: है, अपनी संस्कृति को लेना
0: बिल्कुल
1: है, अपने समाज को लेना है, आपकी समाज की जो समस्याएं हैं, उसकी जो विद्रूपताएं हैं, उनको चित्रित करना है। तो वो एक बहुत बड़ा साहित्य उसके लिए माध्यम है। अगर आज हमारी संस्कृति जिंदा है, हमारा साहित्य जिंदा है, हमारा दर्शन जिंदा है और हमारी भावात्मकता जिंदा है, तो साहित्य के माध्यम से जिंदा है। तो इसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अगर हम सारे का सारा यूं ही वर्णन करेंगे तो वो शायद अच्छा नहीं होगा। तो इस साहित्य को बचाने के लिए इसका सहारा लेना है, उपकरण लेना है, उसको एक साधन बनाना है, साध्य नहीं। तो
0: सुमना जी, उपकरण के रूप में तो ये बहुत अच्छा है, उपकरण के रूप में तो ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये पांडुलिपियां जो पड़ी सड़ रही थी सदियों से, कोई ना इनको आगे लाता। अब कबीर, निराला, प्रेमचंद, हाँ जी, बालकृष्ण भट्ट, निर्मल वर्मा, सबके साहित्यों की रचनावलियां बन बनकर, ग्रंथावलियां बन बनकर डिजिटल लाइब्रेरियों में पड़ी हुई हैं। शोध के लिए कितना काम आसान हो गया है, 50 सन के, 60 सन के ग्रंथ तो अब लाइब्रेरियों में सब कुछ सुरक्षित पड़ा हुआ है। शोध के लिए राह बहुत आसान हो गई है।
1: ये बहुत अच्छी आपने बात की कि अनुसंधान के लिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका
0: हाँ
1: है।
0: जी
1: क्योंकि जितनी भी हमारी पांडुलिपियां हैं, जितनी भी हमारी और ग्रंथ हैं जो
0: जी
1: पड़े हुए हैं,
0: जी
1: उनको सुरक्षित रखने में, आगे पहुंचाने में बहुत बड़ा इसका एक योगदान रहा
0: जी
1: है। लेकिन इसका एक, मुझे लगता है कि जो इसका एक नुकसान भी हो रहा है, हमारी जो नौकरियां हैं हमारे बच्चों की, ठीक है ना, नो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नौकरियां मिलेंगी भी, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी जो नौकरियां भी छीनी जा रही हैं। ठीक है कि शासन की जो बात है, प्रशासन की जो बात है, वो एक तकनीकी साधन के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। जो कानून बड़े बड़े अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं, एक सेकंड में वो ट्रांसलेट होकर

0: जब वहाँ का जो कोई भी व्यक्ति
1: हाँ
0: है,
1: जी,
0: जो उसको जिसने केस किया हुआ है, उस तक पहुँच जाते हैं। ये
1: कई
0: बहुत बड़ी
1: मीडियम बने
0: भूमिका
1: हुए
0: है,
1: हैं,
0: कई
1: OCR
0: माध्यम
1: है।
0: हैं, और एक सेकंड में पूरे विश्व में आप बात कर सकते हैं। और जो आप जितनी भी संगोष्ठियां हुआ करती थी, जितने भी सेमिनार हुआ करते
1: हाँ जी,
0: थे, जितने भी वहाँ विश्लेषण, आलोचना, प्रशिक्षण, समीक्षा हुआ करती थी, उसका कुछ अभाव होता जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ें जो है ना, वो शायद उसका इसके माध्यम से हमारा नुकसान हो रहा है।
1: हाँ जी, मैं यहाँ जोड़ना
0: तो
1: चाहती हूँ कि पाठन संस्कृति भी जा रही है हाथ से, पढ़ने
0: हाँ
1: वाली संस्कृति भी जा रही है। हर कोई बहुत शॉर्टकट ढूंढता है जी, चाहता है कि जल्दी से बस मैं एक हाथ में मोबाइल हो मेरे, और एक मेरे हाथ में लैपटॉप हो, और कोई तीसरी चीज़ ना हो। तो इसलिए वो पढ़ने वाली संस्कृति वो अब रही नहीं है। उसे वापस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए साहित्य सम्मेलन हो सकते हैं, उसके लिए पुस्तक मेले हो सकते हैं, उसके लिए पठन अभियान चलाए जा सकते हैं, पठन पाठन के।
0: ये बहुत अच्छी बात है कि कई बार क्या होता है कि AI का एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि टॉपिक दो कविता लो, कहाँ टॉपिक दो कहानी
1: कहानी
0: लो,
1: लो,
0: टॉपिक दो आलेख लो, ठीक है ना। ये इसके नेगेटिव है, क्योंकि मैं वही बात कह रहा हूँ कि इसमें जो भावात्मकता है वो कहीं खत्म होती जा रही है। कहते हैं कि जब लिपि आई ना, तो सबसे पहले क्या होता था कि हम कंठस्थ विधि से
1: हाँ
0: याद
1: जी,
0: करते थे। हमारे दरमियान एक कंठस्थ विधि थी, हम जबानी याद
1: याद
0: करवाते
1: करते
0: थे और जबानी आगे होती। लिपि आई तो 30% हमारा जो कंठस्थ विधि थी उसको खा गई। अब AI आ गया, तो AI की वजह से हमारी जो बहुत सारी सोचने की क्षमता
1: क्षमता
0: है
1: है, खत्म हो रही
0: वो
1: है
0: भी
1: जी,
0: समाप्त हो रही है,
1: खत्म हो
0: उसका
1: रही है।
0: भी
1: नहीं,
0: वो भी क्षीण होती जा रही है।
1: रेडीमेड के आदि हो रहे हैं
0: हम
1: ना,
0: आत्मविश्वास
1: हाँ
0: कम हो रहा
1: हाँ
0: है, आत्मविश्वास जो है वो
1: हाँ
0: क्षीण होता जा रहा है।
1: हाँ
0: तो ये क्योंकि इसका एक नुकसान भी तो है ना। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि आजकल बायोमेट्रिक लगे हुए हैं, है ना, आजकल ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो कहीं अगर, क्योंकि आदमी दौड़ा जाता है, अब टाइम की का महत्व तो हो गया, लेकिन वो देता क्या है वहां जाकर के, ऑफिस में, कार्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी संस्था में जाकर के क्या देता है, इसका तो उसको नहीं पता। टाइम तो हम देख लिया, लेकिन वो चीज़ नहीं है। इसका ये भी है, बच्चों की नौकरी जा रही है, ठीक है, हमारी भावनाएं क्षीण होती जा रही है, लिखने की जो क्षमता है विद्यार्थियों की कमी हो रही है। आपने देखा होगा कि पहले जब लिखते थे, कि जब पत्र लिखा करते थे, और पत्र जो है उन्हीं के माध्यम से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की उपाधि पर पहुंच गई, क्योंकि नेहरू ने पत्र ही लिखे थे,
1: मानसिक परिपक्वता मिली।
0: और पत्रों के माध्यम से। अब आपने देखा होगा कि बचपन में क्या करते थे, पत्र लिखते थे एक दूसरे को, तो जब भी हम उस पत्र को पढ़ते थे, तो पढ़ने के बाद हमारे मन में एक पूरे का पूरा वहां दृश्य जो था वो प्रकट हो जाता था और बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज हम एक सेकंड में लिखते भी हैं और दूसरे सेकंड में उसको डिलीट भी कर
1: डिलीट भी
0: देते
1: कर
0: हैं।
1: देते हैं,
0: ठीक, उसके लिए अगर अच्छे हैं, वायरल भी हो रही हैं चीज़ें और लाइक्स भी मिल रहे हैं,
1: हाँ
0: और लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं, कि क्योंकि अगर उनको कोई लाइक्स कम आते हैं तो डिप्रेशन का
1: हाँ
0: शिकार। तो ये नुकसान उनकी बौद्धिकता पर, उनकी मानसिकता पर, उनके मनोविज्ञान पर, उनकी सोच पर ये असर तो डाल रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं इसका प्रभाव
1: सर,
0: हो
1: आज
0: रहा
1: की पीढ़ी जो है हमारी, वो इन सब चीजों से बिल्कुल
0: है।
1: अभिज्ञ है। बिल्कुल उनको नहीं पता कि कौन से पहले पत्र होते थे, कैसे लिखे जाते थे, कैसे एक दूसरे के भाव दूसरे तक पहुंचते थे। इन लोगों के लिए, इन नए बच्चों के लिए ये सब चीजें अब मायने नहीं रखती। यदि इसकी वजह से ये चीजें मायने नहीं रखती, तो संस्कृति का ह्रास हो रहा है, संस्कृति का क्षय बहुत हो रहा
0: बुरी
1: है,
0: तरह से,
1: संस्कृति
0: बहुत
1: हमारे
0: बुरी तरह
1: पीछे
0: से।
1: छूट रही है। हम ये नहीं कहती कि मैं पाश्चात्य का अनुकरण नहीं करूं, उसका भी हम अच्छी तरह से अनुकरण नहीं कर पा रहे। हम बीच की स्थिति में हैं, डामाडोल की स्थिति में हैं। या हमें यही कह दो, सजा कर लफ्ज वो कागज पे, महफिल कर भी दे शायद, मगर जो रूह का हिस्सा है वो शामिल कहाँ होगा।
0: हाँ
1: सहारा है ये बस लिखने का, कोई हम सब नफस तो नहीं, मशीन उस्ताद हो सकती है पर बिस्मिल
0: बहुत
1: कहाँ होगा।
0: सुंदर पूनम, तुम्हारी बात में कड़ी में मैं जोड़ते हुए कहती हूँ,
1: हाँ जी,
0: पंकज नाम के कवि ने भी बहुत सुंदर लिखा है इसी पर, कि चाहे जितनी क्षमता भर दो तुम उनके कल पुर्जों में, मगर मशीनें इंसानों की जगह नहीं ले सकती हैं। ज्ञान भरा जिज्ञासा की प्यास कहाँ से लाओगे, रंग बदलती कुदरत का आभास कहाँ से लाओगे। शब्द अर्थ बन बुद्धि विद्या, सोच समझ तो कर देगी, मगर मशीनों के भीतर एहसास कहाँ से लाओगे, एहसास कहाँ से भर
1: एहसास कहाँ
0: देगी।
1: से लाओगे।
0: एहसास
1: कहाँ
0: बहुत
1: से
0: अच्छी
1: लाओगे,
0: बात है
1: बहुत
0: कि
1: अच्छी,
0: मशीन एहसास नहीं
1: हाँ
0: है,
1: जी, हाँ
0: मशीन बौद्धिकता का है, ये
1: जी
0: बात है।
1: जी
0: मशीन तकनीकी एक विज्ञान है,
1: हाँ जी
0: और मशीन के माध्यम से हम भाव नहीं ले
1: जी हाँ
0: सकते।
1: जी
0: तो
1: हाँ जी,
0: साहित्य में भाव
1: तो
0: विलुप्त
1: मुख्य
0: होंगे,
1: हैं, मुख्य हैं जी,
0: मुख्य हैं।
1: हाँ जी,
0: इसीलिए क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो, उसका हमें समाज के हित के लिए उसका प्रयोग करना है, समाज संस्कृति को बचा

0: के लिए उसका प्रयोग करना है, साहित्य को, दर्शन को, आध्यात्मिकता को बचाने के लिए उसका प्रयोग करना है, उस पर अपना उसको हावी अपने ऊपर नहीं होने देना
1: चाहिए,
0: क्योंकि हमने उसको बनाया है, उसने हमें नहीं बनाया है।
1: तो यही वजह है कि यदि सोच समझ कर इसे अपनाया जाए तो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य नई ऊंचाइयों को छू सकता है, क्योंकि हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा है और आधुनिक तकनीक का संतुलित समन्वय ही इसका भविष्य का मार्ग जो है वो प्रशस्त करेगा।
0: बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि साहित्य को, भाषा को, योग को, चिकित्सा को, भारतीय संस्कृति को विदेशों तक हिंदी भाषा के माध्यम से पहुंचाने का एक बहुत बड़ा उपकरण के रूप में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो साबित हुई है, प्रमाणित हुई है। तो आप लोगों ने बहुत ही विस्तृत चर्चा की, बहुत ही अच्छी बातें साहित्य के माध्यम से भाषा के, क्योंकि भाषा को संवारने के माध्यम से, साहित्य को माध्यम से, भाषा को लोगों तक पहुंचाने के माध्यम से आपने बहुत विचार चर्चा की है। आप यहाँ पे आए मैडम पूनम जी और मैडम नील सेठी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी श्रोता हैं इससे जरूर लाभान्वित होंगे और साहित्य में रुचि दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृत्रिम बुद्धिमता एवं हिंदी साहित्य, इस विषय पर आप एक परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे प्रोफेसर सोमनाथ शर्मा, डॉक्टर पूनम महाजन एवं डॉक्टर नीलम सेठी। इसी के साथ परिमल का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सोहन कुमार। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से सुन रहे थे।

गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साकाओ, तू ठाकुर ऊच पगवाना। इस विच कोई अतकथनी नहीं कि अकाल पुरख दी महिमा बयान ही नहीं कीती जा सकती, उस दे गुण गायन नहीं कीते जा सकते। पर फिर भी मन विच ए लोचा हुंदी है, गाये गुण गोपाल कृपा निध, दुख बिदारन सुख दाते सतगुर, जाको पेटत होए सगल सिद्ध। सरवण करदे आ भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

गुण गोपाल कृपा निध, दुख बिदारन सुख दाते सतगुर, जाकौ पेटत होए सगल निध। इस शब्द गायन कीता सी पाई बख्शीश सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। ओ परमात्मा सर्ब कला समर्थ है, सब जियां दा दाता है, दीना ते दया करन वाला है, सारे जियां दा रिजक दाता है। तांते फिर दिन रात उसे दे ही गुण गायन करने बढ़ते ने। रैण दिनस प्रभात तू है ही गावना, जीय जंत सरबत नाओ तेरा त्यावना। सरवण करदे आं भाई जगीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों इस पौड़ी दा गायन।

0: रैण दिनस प्रभात तू है ही गावणा। इस पौड़ी का गायन किया सी भाई जगीर सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस पौड़ी की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी दिलबाग सिंह।
1: पौड़ी रैण दिनस प्रभात तू है ही गावणा, जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावणा, तू दाता दातार तेरा दिता खावना, भगत जना कै संग पाप गवावना, जन नानक सद बलिहारै बल बल जावना। ए पावन पौड़ी धन गुरु रामदास जी दे पावन मुखारबिन तों उचारण कीती हुई है। अते राग सोठ वार महले चौथे की सरलेख हेठ बाणी विच पौड़ी दे रूप विच दर्ज है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 652 ते सुशोभित है। गुरबाणी दे शब्द दा केंद्री भाव रहाओ दियां पंक्तियां विच हुंदा है, पर जिस शब्द विच रहाओ दियां पंक्तियां नहीं हुंदियां उस शब्द दियां पहलियां पंक्तियां विच शब्द दा केंद्री भाव मन्निया जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच 22 वारां दर्ज हन। वारां विच श्लोक ते पौड़ियां दर्ज हन। केंद्री भाव पौड़ी विच हुंदा है। विचार अधीन शब्द रूपी पौड़ी दियां पहलियां पंक्तियां हन। रैण दिनस प्रभात तू है ही गावणा, अकाल पुरख सर्ब कला समर्थ है, सब जीवां नूं पैदा करन वाला है, सब गुणा दा मालक है, ऐसे प्रभु दी सिफत सलाह करनी चाहीदी है। परमात्मा दे प्यारे अमृत वेले दिन रात परमात्मा दी सिफत सलाह करदे हन। धन गुरु नानक साहिब जी दा पावन वचन है, नानक भगतां भुख सलाहण सच नाम आधार। भगत नाम देव जी राग भैरू विच बख्शिश करदे हन। जिवें भुखे मनुख नूं अन्न प्यारा लगदा है, प्यासे मनुख नूं पाणी चंगा लगदा है, माया विच गलतान मनुख नूं अपना ही परिवार चंगा लगदा है, लोभी मनुख नूं धन चंगा लगदा है, इवें अकाल पुरख दे प्यारियां नूं दिन रात उसकी सिफत सलाह करनी चंगी लगती है। भगत नामदेव जी बख्शिश करते हैं, जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखावंत जल सेती काज, जैसी मूड कुटुंब परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण। शब्द की अगली पंक्ति है, जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावणा। सारी सृष्टि दे जीव अकाल पुरख पिता जी दे आप उत्पन्न किए हुए ने। समग्र जीव आप जी दे ही गुण गायन करते हैं, आप जी का ही नाम ध्याते ने। परमात्मा दे प्यारियां नू सारे जीव उस करते दी सिफत सलाह करते नज़र आते हैं। श्लोक वारां ते वधीक विच गुरु अमरदास जी बख्शिश करते हैं, हर हट पी तू तू करै बोलै भली बाण। गुरु नानक साहिब जी सोदर दे सरलेख हेठ बख्शिश करते हैं कि करते दी साजी हुई सारी कायनात उसकी सिफत सलाह कर रही है। सोदर तेरा केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब संभाले, वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वावन हारे, केते तेरे राग परी सो कहियै, केते तेरे गावन हारे, गावन तुदनो पवन पाणी बै संतर, गावै राजा धर्म द्वारे, गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे, गावन तुदनो ईश

दिन पी गावो रैनी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास हुए हर जीवत मर्त संगारी। आप जी सर्वण कर रहे सो भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ

विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA नीट UG 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। NTA ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। NTA ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में IPL क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़।
1: ओ दीदी, बैंक का नंबर चाहिए था, रिफंड नहीं आया। मिल गया, हुणे फोन कर दें। दीदी
0: बिना नंबर दी जांच कित्ते? अक्सर धोखेबाज जाली बैंक वैबसाइटा ते जाली नंबरां नाल पैसे ठगदे हन।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक दी अधिकारिक वैबसाइट जाते कार्ड ते।
1: तुसी दा बचा लिया दीदी।
0: काम तो नहीं
1: कर रहे हैं जी।
2: आरबीआई कहंदा है
3: सही वित्तीय रवैया तुहानू बचाएगा हमेशा।
4: हुणे तुसी सुन रहे सी समूह गल। असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 6:20 होने जा रहे हैं। पेश ने प्रादेशिक खबरां।

0: हो गया इंतजाम।
1: किस दा?
0: गुड्डी दी फीस दा।
1: दिखा 20,000 दा लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है? ब्याज किन्ना है? लोन सिर्फ नियंत्रित संस्थावां तो ही लो। लोन दा विचार लोड अनुसार, वो भी चेक करके। हो गया इंतजाम, तनखा एडवांस च भेजिए।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय रवैया तुहानू बचाएगा हमेशा।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी जनरल शर्मा तों प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। गुरुग्राम दी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अदालत ने पंजाब दे उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा नूं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट दी 7 दिनां रिमांड ते भेजिआ। केंद्र सरकार ने किरत कोड लागू करन लई नवें दिशा निर्देश जारी कीते। राज्यसभा मैंबर संत बलबीर सिंह सचिवाल ने कहा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीजे गेड़ दौरान पंजाब च 835 करोड़ की लागत नाल सड़क बनणगियां। मौसम विभाग ने पंजाब ते हरियाणा च कल लई मीह पैण बारे ऑरेंज अलर्ट अते इस तों बाद 14 मई तक येलो अलर्ट जारी किया। अते आईपीएल क्रिकेट विच अज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला रायपुर च मुंबई इंडियनस नाल शामी 7:30 बजे होगा। ते हुण खबरां विस्थार नाल। गुरुग्राम की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा नूं एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट की 7 दिन के रिमांड पर भेज दिता है। डायरैक्टोरेट ने उन्होंने कल चंडीगढ़ तो 100 करोड़ तो वध के वस्तां ते सेवावां कर धोखाधड़ी के मामले च गिरफ़्तार किया। संजीव अरोड़ा नूं उन्हां दी रिहायश, उन्हां नाल जुड़ियां संस्थावां अते हैप्टन स्काई रियलिटी लिमिटेड HSRL ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ 4 ਟਿਕਾਣਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ HSRL ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ

0: क्योंकि बासमती दी खाद की रिक्वायरमेंट पहले ही बहुत घट है, इस
1: ठीक।
0: करके हरी खाद है जी वो भी आप कर सकते हैं। जे किसी किसान भीर ने मूंगी की कीती है जी, मूंगी ने फलियां तोड़ के बाद बिच वाही हैगी, फिर उन्होंने आप 35 किलो खाद वो भी बचा सकते हैं।
1: सो डॉक्टर अशोक कुमार जी, तुसीं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि किस तरीके ना आपां वधिया खाद प्रबंध करके सौनी फसलां 'च झाड़ लै सकते हैं, बहुत वधिया। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी इस सब जानकारी लई जी।
0: धन्यवाद जी।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

लो वक्री रवायत रखती है। राजा रसालू सियालकोट के राजा सलवान की दूसरी औलाद सी। सलवान के दो पुत्रां विच्चों इछरा पुत्र पूरन जोगी नायक सी ते लूणा पुत्र रसालू सूरबीर नायक। राजा रसालू पूरन वर्गियां स्थितियां का ही शिकार हुंदा है, परंतु जदों इन्हां तों मुक्ति चाहुंदा है तां इस दे समर्थ बन विखाउंदा है। वह निश्चित समय तो पहलां भोरों निकल तुरदा है। सलवान रसालू की चरित्र विचली विद्रोही सुर नूं समझदिआं उस नूं देश निकाला दे दिंदा है। राजा रसालू तो पहले ही घूमन लई पैदा होया सी। पिया का देश उस लई सौड़ा सी।

0: राजे रसालू बारे कई गाथावां प्रचलित ने। प्राप्त गाथावां ही उसके किरदार दियां वक्खो वक्खरियां दिशावां ने। लूणा ने पूर्ण भगत द्वारा दिता चावल का दाणा नवे चन्न नूं वेख के खाधा। फलस्वरूप रसालू का जन्म होया। नजूमिया ने कहा है,
1: महाराज जिस घड़ी ये बाल जमया वह घड़ी शुभ नहीं, ये माँ बाप दोहां ते भारू है। इसनू 12 वरे मापियां दे मूँह नहीं लगना चाहिए, पर बालक वड्डा हो के बड़ा भारी सूरमा बनेगा। ये पैरां च चक्कर है महाराज, ये किधरे

0: मैं सिरां दी बाजी ला के खेडदा, जे मैं पहली बाजी हारी ता मेरा तन दौलत सब कुछ तुआडा, जे दूजी हारी ता घर महल ते राज तुआडा, ते जे तीजी बाजी हारी ता मेरा सिर तुआडे हवाले, चाहे कटो चाहे रखो।
1: राजा रसालू राजा सिरकप नाल सिर तड़दी बाजी ला के चौपट खेडिया। रसालू बाजी जित गया, पर अनेकां गुणा दे हुंदे होए भी रसालू विच्चों अपने बाप सलवान दा चरित्र पूरी तरह नहीं सी मरिया। सिरकप दा सिर लैण दी थां वजों उस दी नवजम्मी बच्ची कोकिलां दा डोला मंग लिया। बच्ची नाल इक अंब दा बूटा भी दित्ता गया। अंब ते बूर आउणा कोकिलां दे पत्नी बनण दे योग होण दी भी निशानी सी।

इच्छा कर ली प्रेरिया। इस लालच बस हुडी कोकिला पास पहुंच गया। कोकिला दे रखवाले मैना ते तोते ने सब हुई वापरी राजे रसालू नू जा दसी। रसालू महल की हालत तो हुई साजिश बारे समझ गया। उस बदला लैली भोजन च कोकिला ने उसके यार हुडी का दिल खवाया।

0: भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: आज प्रधानमंत्री वल्लों उद्घाटन किए गए प्रोजेक्टर विच वारंगल विच पीएम मित्र पार्क शामिल है। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद पणजी आर्थिक लांघे तहत गुड्डे बेलूर और महबूब नगर विचकार राष्ट्रीय शाहरा नंबर 160 के चार मार्गीकरण से संगरेटी जिले विच जहीराबाद सनती खेत्र के विकास का नींव पत्थर भी रख्या। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित हड़ां ते लू दी स्थिति नाल निजिठण लई देश दीआं तैयारियां दी समीक्षा कीती। नवी दिल्ली विच अज इक उच्च पदरी मीटिंग विच श्री शाह वल्लों सरकारी एजेंसियां दी तैयारी दा मुलंकण कीता गया ते शुरुआती चेतावनी प्रणालियां वसीलियां दी तैनाती ते अंतर एजेंसी तालमेल दा जायजा लिया। गृह मंत्री ने देश विच कीते जा रहे हड़ रोकथाम दे लंबे समय दे उपावां दी प्रगति दी भी समीक्षा कीती, जिस विच महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टां दी सुरक्षा, दरियावां दे प्रबंध संबंधी पहलकदमियां अते पेशीनगोई विच विज्ञानक तरक्की शामिल। मीटिंग विच जनतक जागरूकता, जान माल दे नुकसान नूं रोकण लई निर्माण प्रोग्रामां अते जरूरी राहत समग्री दे ढुकवे भंडार ते डॉक्टरी तैयारी नूं यकीनी बनाउण बारे भी चर्चा कीती गई। उत्तर प्रदेश विच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अज अपने मंत्रीमंडल का विस्तार किया, जिस विच 6 भाजपा नेतावां ने मंत्री वजों सहु चुकी। इस तों इलावा 2 राज मंत्रियों नूं तरक्की दित्ती गई ते उन्हां नूं सुतंत्र चार्ज दित्ता गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जन भवन विखे कराए गए एक समारोह विच उन्हां नूं अहुदे अते सरकारी भेद गुप्त रखण की सहु चुकाई। भाजपा के साबका सूबा प्रधान भूपिंदर चौधरी ते भाजपा नेता मनोज पांडे नूं कैबिनेट मंत्री वजों शामिल किया गया। राजमंत्री अजीत पाल सिंह अते सुमेंद्र तोमर नूं तरक्की दे के सुतंत्र चार्ज दिता गया। तमिलागा वेत्री कड़कम टीवीके पार्टी के मुखी सी जोसफ विचे तमिलनाडु के नवे मुख्यमंत्री बन गए ने। उन्होंने अज सवेरे मुख्यमंत्री वजों सहु चुकी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने उन्होंने अहुदे ते सरकारी भेद गुप्त रखने की सहु चुकाई। श्री विजय के नाल 9 मंत्रियों ने भी सहु चुकी। विधायकों के सहु चुक समागम लई विधानसभा का इजलास भलके होगा। नवी बड़ी सरकार नूं बुधवार तक बहुमत साबित करने लई कहा गया है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @EIRRN जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-EIR जलंधर, अते यूट्यूब ते साडा चैनल है @EIR जलंधर। गुरुग्राम की एक विशेष PMLA अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच पंजाब दे सनत मंत्री संजीव अरोड़ा नूं इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED की 7 दिनों की रिमांड ते भेज दिता है। डायरेक्टोरेट ने कल संजीव अरोड़ा नूं चंडीगढ़ तो 100 करोड़ रुपए तो वधे वस्तु ते सेवा टैक्स GST दे लैंड देन विच धोखाधड़ी दे मामले विच गिरफ्तार किया। संजीव अरोड़ा नूं उन्हां दी रिहायश, उन्हां नाल जुड़ियां इकाइयां अते हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड HSRL दे एक दफ्तर समेत 4 अहातियां ते तलाशियां लैण तों बाद गिरफ्तार किया गया सी। HSRL भी इस मामले विच एजेंसी की जांच अधीन है। वाइस एडमिरल संजय वाटसन नूं मुंबई विच स्थित समुद्री फौज की पछमी कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। वह भारतीय समुद्री फौज दियां सब तो रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण कमाना विचों एक दा चार्ज संभालणगे, जो अरब सागर विच भारत के पछमी समुद्री मोर्चे अते मुख समुद्री लेना की सुरक्षा लई जिम्मेवार है। वह इस समय नेवल स्टाफ के उप मुखी वजों सेवा निभा रहे ने। तोपखानिया ते मिजाइल प्रणालिया के माहर वाइस एडमिरल वाटसन 1988 भारतीय समुद्री फौज विच कमीशन दिता गया सी। उन्होंने 3 दहाकों तो वध समय तक मुख संचालन कमान ते स्टाफ नियुक्तियां विच सेवा निभाई है। अपने करियर दौरान उन्होंने कई मोरले जंगी जहाजा ते सेवा निभाई है। मिजाइल किश्तियां, एक मिजाइल कारवेट ते एक गाइडेड मिजाइल फ्रिगेट समेत समुद्री फौज के कई समुद्री जहाजा की कमान संभाली है। उन्होंने समुद्री फौज के सदर मुकाम अते एकीकृत रक्षा स्टाफ विच महत्वपूर्ण नीति ते योजनाबंदी भूमिकावां भी निभाईआं ने। उन्होंने उन्होंने विलखण सेवा के सन्मान विच 2021 अति विशिष्ट सेवा मैडल नाल सन्मानित भी किया गया सी। केंद्रीय व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने अज मां दिवस के मौके पर मुंबई विच मैटरनल न्यूट्रिशन किटा वंडियां। इकट्ठ नूं संबोधन करदे श्री गोयल ने कहा कि गर्भ अवस्था के आखिरी पड़ावों में औरत दियां पोषण संबंधी जरूरतों के नाल नाल नवजम्मे बच्चियां दियां जरूरतों नूं ध्यान विच रखते हुए विशेष तौर पर तैयार की गई किटा दित्तियां गई ने। उन्होंने कहा कि मावां ते बच्चियां की सेहत सीधे तौर पर देश के भविख नाल जुड़ी हुई है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर विच अमृत पर्व के मौके से खुशी के उत्साह का माहौल है। भगवान शिव नाल जुड़े 12 ज्योतिरलिंग आस्था ते श्रद्धा के विशेष केंद्र ने, सोमनाथ उन्हां विचों पहला ज्योतिरलिंग है। अमृत पर्व से मुरम्मत किए गए सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थ स्थानों के पानी नाल अभिषेक

0: कि इन्हां ने लिखा है कि मेरे को रेडियो भी है पर मैं AIR मोबाइल ऐप जी है यानी न्यूज़ ऑन
1: न्यूज़ वाली है।
0: AIR मोबाइल ऐप राही ये प्रोग्राम सुनना। साढ़े कई सुनने वाले सानू लिखते हैं जी कि साढ़े को मोबाइल तो हैगे ने पर रेडियो सुनने का मज़ा जो रेडियो तो आता है वह मोबाइल ऐप तो नहीं आता।
1: जी
0: ये बिल्कुल उंजी है जिमें साढ़े सुनने वाले कई बार सानू चिट्ठियां लिखते हैं तो कहते हैं जी कि चिट्ठी तो असी ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं पर जो मज़ा चिट्ठी लिख के आता है ना और
1: जी
0: सानू भी जो मज़ा चिट्ठी पढ़ के आता है वह ईमेल तो नहीं आता। खैर ये कहना दुरुस्त नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी है जमाने के नाल नाल हर एक चीज़ बदलनी है और हर एक चीज़ के नाल नाल असी बदलना है ताइयों असी अपने आप नू समय दे हाणी कह सकते हैं है ना
1: बिल्कुल
0: कि
1: जी,
0: असी समय के नाल नाल चलते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: सो
1: कहा
0: साडे
1: तुसी।
0: बलबीर सिंह जी समय के नाल नाल चलते हैं, रेडियो भी इन्हां कोल है और मोबाइल ऐप ते भी ये प्रोग्राम सुनते हैं और इसे तरह ये ईमेल भी कर सकते सिगे पर इन्हां ने सानू चिट्ठी हाथ नाल लिख के पाई है ना।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी
0: सो
1: ताड़ा।
0: बहुत शुक्रिया जी और असी उम्मीद नहीं बल्कि यकीन रखते हैं जी कि अगले प्रोग्राम वास्ते भी थोड़ी चिट्ठी जरूर आएगी
1: एक
0: सानू।
1: इन्हां ने चिट्ठी खोलते वक्त एक होर मैं सांझी करना चाहवांगी गल कि इन्हां ने चिट्ठी जदों सानू भेजी है तो असी उसका जो लिफाफा खोलिया ना
0: जी
1: तो वह पुराने समय दिया जो चिट्ठी खोलन वेले खुशी हुंदी सी जां एक
0: जी
1: सरप्राइज हुंदा सी ना वो बिल्कुल उंज दा ही महसूस होया।
0: मतलब ये कहना चाहते हैं पूनम जी कि साढ़े को बहुते जड़े खत आते हैं ना वो पीले पोस्ट कार्ड आते
1: जी
0: हैं है ना
1: या ईमेल आते ने।
0: उन्होंने खोलण का मौका ही नहीं मिलता है ना।
1: जी
0: ये चिट्ठी जदों एक कोने तो फाड़ के और एक
1: जी
0: होर गल दसते हैं कि साढ़े एक सुन वाले सज्जन ने मैनू याद नहीं है कि जगह तो खत लिखते हैं वो नीला नीली चिट्ठी नहीं होंगी जी तीन पासों तो
1: जी
0: बंद
1: जी
0: की
1: जी
0: होंगी है
1: बिल्कुल
0: और एक बार तो उन्होंने खत भेजा तो वो आटे नाल जोड़िया होया सी आसियां पासियां तो
1: अच्छा
0: है ना
1: ठीक है
0: बचपन च याद है ना पूनम जी असीं भी
1: बिल्कुल
0: आटे दे नाल पतंग जोड़दे हुंदे
1: जी
0: सी है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल याद है।
0: सो वो आटे नाल जोड़िया होया सी ते उहनूं खोलण वेले ते इन्नी ज़्यादा खुशी हुई कि असीं दस नहीं सकते।
1: जी
0: जी
1: ये सारियां जिहड़ियां पुरानियां यादां ना चिट्ठियां दे जरिए यादां तरोताज़ा हो जांदियां ने।
0: बिल्कुल सही जी
1: अगला खत दोस्त ने पप्पू राजा खुश दिल होना दा नाल ने
0: जी
1: संगीता जिंदल चकला बाजार समाणा तो।
0: ट्रिप्लीकेट मारिया इन्हां ने
1: जी
0: पेन
1: रंग
0: हर एक खत दे विच वक्खो खरे वरते ने है ना।
1: सारे स्केच रखे हुए ने इन्हां
0: जी
1: ने।
0: हाँ जी
1: कहिंदे
0: बिल्कुल
1: कि 11 अप्रैल दा तुहाडी चिट्ठी मिली कल्ले परमजीत जी ने पेश कीता पूनम जी उस दिन आए नहीं की
0: जी
1: कारण है।
0: जवाब दियो जी
1: जी बाकी तुहाडे सारे अनाउंसर कहिंदे चंगा प्रोग्राम पेश करदे ने। 10 अप्रैल दा देहाती प्रोग्राम सब दी पसंद चंगा लगा। उसे दिन दा हैलो फरमाइश पसंद आया। सौगात प्रोग्राम दे विच कहिंदे कि 71 नंबर फोन खराब रहिंदा उसनूं जल्दी ठीक कराओ जी पर जदों एक नंबर खराब हुंदा दूसरा नंबर जरूर चलदा रहिंदा जी।
0: जी और असी अनाउंस भी करते रहने हैं प्रोग्राम दे विच कि आज
1: बिल्कुल
0: तुसी इस नंबर ते कॉल कर सकते हो।
1: अगे लिखदे ने कि 18 अप्रैल दा तुहाडी चिट्ठी मिली प्रोग्राम प्रभजोत जी ते सोन जी ने चंगा पेश कीता पर
0: जी
1: साडी चिट्ठी शामिल नहीं कीती की
0: ओ
1: कारण है।
0: की कारण है एक तो ये तो नहीं कि वो पिछली चिट्ठी जिहड़ी तुसी पढ़ी आ वो उस प्रोग्राम दी होवे ते उदों पहुंची ना होवे ते अज पहुंच गई होवे।
1: बिल्कुल हो सकता है
0: जी
1: उस दिन का चिट्ठिया मिठिया प्रोग्राम पसंद आया। उस दिन वास्ते विड़े प्रोग्राम फरमाइशी झांझरा दे बोर पसंद आया। 10 बजे वाला हैलो फरमाइश फोन इन ही खत भी शामिल करो कहिंदे इस दे विच।
0: जी सब तो पहला तो पप्पू राजा खुशदिल जी और संगीता जिंदल जी मैं तुहानू दस चुकिया कि पिछली प्रोग्राम से तुहाड़ी चिट्ठी ना शामिल होने का कारण यह हो सकता है कि वह चिट्ठी थोड़ी जी पछड़ के साडे कोल पहुंची होवे। बाकी 10 बजे वाले प्रोग्राम के बारे तुसी कहा कि उहदे विच चिट्ठियां भी शामिल करो है ना। मेरा ख्याल है पूनम जी असी अगे भी अपने सुनने वाले दस चुके हैं कि साढ़े वक्-वक् सिलसिले जिहड़े ने वो वक्-वक् प्लेटफॉर्म्स ते आधारित ने यानी चिट्ठियां वाले प्रोग्राम वक्रे ने फोन वाले प्रोग्राम वक्रे ने और व्हाट्सएप आधारित फरमाइश वाले प्रोग्राम वक्रे ने। मेरा
1: जी
0: ख्याल है जे तुसी किसी दूसरे मोड नाल हाजिरी लगवाना चाहते हो तो किसी होर प्रोग्राम च भी शामिल हो सकते हो क्योंकि इक्को प्रोग्राम च जदों सारे रस्ते शामिल कर लेते जाते हैं ना तो बड़ा अजीब जिहा मिलगोबा जिहा बन जाता वह है ना। जी
1: जी जी शुक्रिया जी खत लिखने लिए अजय इन्हों का खत हो बाकी है।
0: ओ
1: जी 4 अप्रैल तक चिट्ठी मिली प्रोग्राम इन्होंने बहुत चंगा लगा साड़ी चिट्ठी फिर नहीं शामिल की फिर दसो की कारण है। ये हर
0: लॉर्ड
1: खत के कारण जरूर पूछ रहे हैं।
0: जी जी जी
1: तुहाडे सारे अनाउंसर दी आवाज़ा कहिंदे बहुत वधिया लगदियां ने। साडी बेनती है कि तुसी फरमाइशी प्रोग्राम व्हाट्सएप ते भी जरूर शुरू कर दो। फरमाइशी प्रोग्राम वैसे तो मग जलंधर पैंती प्रोग्राम जिहड़ा है जी वो
0: जी
1: तो व्हाट्सएप ते ही है।
0: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरा ख्याल है दिन वेले भी है साढ़े प्रोग्राम सुनते होंगे जरूर। बाकी तुसी क्या ना कि हर खत विच ये पुछदे ने कि साड़ी चिट्ठी शामिल क्यों नहीं कीती गई
1: जी
0: पुछना बनता भी है। हुण तुसी देखो किन्ने रंगां दे स्केच पेन इन्होंने रखे हुए ने है ना
1: जी
0: ते सारे रंगां नू बदल बदल के वर्तन दे विच चिट्ठी

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cyber

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया देश पराया।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लग दी है, मुबारक फेरते। पर किते उना ने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
1: 8:45 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ। 9 ਵਜੇ News@9, 9:30 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, 10 ਵਜੇ ਰਵੀਵਾਸਰੀ ਹੈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸਭਾ, 11 ਵਜੇ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਤੇ 11:05 ਸਮਾਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
3: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
2: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
3: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% LPG कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, CNG आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित PM मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि BRS और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।

0: बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई

0: में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के भिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे।

मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती

0: मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. It is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super-speciality quaternary.

0: spiritual gatherings and community programs. Prime Minister Narendra Modi also emphasized that the core element connecting India's diverse traditions is the spirit of seva or service, and also highlighted that any mission succeeds when it gains the strength of the society. He commended the Art of Living for its grassroots efforts in tree plantation, rural development, women empowerment and mental health programs for inmates.
1: हमारे यहाँ कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है। सेवा परमो धर्म है, ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है।
0: The Prime Minister noted that India's growth, particularly in the fields of technology, innovation and startups, is driven by its youth. He stressed the importance of helping youth find mental peace, staying connected with to their roots and develop a sense of social responsibility.
1: आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है, नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है।
0: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship. He linked these efforts to the government's broader Mission Life initiative, which promotes a lifestyle in balance with nature.
1: भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं। आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं।
0: The Prime Minister in recent years has repeatedly linked wellness and preventative healthcare with national productivity, mental health and lifestyle management. Officials say institutions promoting meditation, yoga and stress management are now being viewed as complementary to formal healthcare systems. Bengaluru itself has become an important center for this wellness ecosystem, blending technology, education and spiritual tourism. Over the past several years, India's healthcare strategy has increasingly focused on strengthening district hospitals, expanding medical education and improving access to affordable treatment through schemes such as Ayushman Bharat. Telangana has emerged as one of India's healthcare and pharmaceutical hubs, attracting patients not only from neighbouring states but also from abroad. The Prime Minister laid the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 between Gudebellur and Mehboobnagar. The highway forms part of the larger Hyderabad-Panaji economic corridor and is expected to improve connectivity between Telangana, Karnataka and Goa. Road infrastructure has been one of the central themes of India's developmental push over the past decade. Under programs such as Bharatmala and PM Gati Shakti, the government has sought to integrate highways, ports, rail corridors, logistics parks and industrial clusters into a unified transport network. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the government has invested nearly 1.75 lakh crores in national highways, doubling the network in Telangana. Let's listen to what he said.
1: बीते 12 वर्षों में भारत सरकार

0: सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है। रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है।
1: The Prime Minister also highlighted the development of the Zahirabad industrial area as part of the national initiative to build industrial corridors, aiming to transform the region into a manufacturing powerhouse with world-class infrastructure and advanced ICT networks. Let's listen to what he said.
0: जहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहाँ हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है।
1: Another major announcement during the Hyderabad program was the foundation stone for the Zahirabad industrial area in Sangareddy district. The Zahirabad industrial area will include plug and play facilities, logistics support and infrastructure for export oriented industries. Telangana has steadily positioned itself as an investment destination in sectors such as electronics, pharmaceuticals, defense, manufacturing and data services. Industry representatives believe the corridor could further strengthen Hyderabad's role as a logistics and manufacturing hub in southern India. The Prime Minister also discussed the importance of energy for 21st century progress, mentioning the inauguration of the Indian Oil Terminal in Malkapur as a step to strengthen supply chains. He also advocated for the restrained and efficient use of energy resources such as petrol and gas to reduce reliance on imports. Let's listen to what he said.
0: इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह टर्मिनल तेलंगाना की बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: The final major project of the day focused on one of India's oldest employment sectors, textiles. The Prime Minister also inaugurated the PM Mitra Textile Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. PM Mitra or the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme is part of government's effort to modernize India's textile sector and improve export competitiveness. Telangana has a long history of cotton cultivation, weaving traditions and textile activity. The Warangal project aims to connect this traditional strength with modern industrial infrastructure and global supply chains. Let's listen to what the Prime Minister said about this.
0: Warangal ka PM Mitra Park desh mein textile kranti ko gati dega. PM Mitra Park mein lagne wali units ko केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी, यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले।
1: अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स Each PM Mitra Park could attract investments worth nearly 10,000 crore rupees while generating large-scale employment opportunities. Prime Minister Narendra Modi's visit to Karnataka and Telangana brought together several themes that have come to define India's current development narrative: infrastructure expansion, industrial growth,

0: senior broadcaster RJ Simran looks back to some exciting times.
1: अच्छा, रेनबो के पहले रेडियो का मतलब था सोबर, फॉर्मल. एंड देन बाय अर्ली 1993 केम एफएम रेनबो, जैसे कि राज कपूर की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में रणबीर कपूर की कलरफुल एंट्री हो गई हो. वी मेड अ ग्रैंड डेब्यू एज रेडियो जॉकीज.

0: वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न, वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: विद्वान डी श्रीनिवास, ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना, वॉज बॉर्न इन टू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगैन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। बाय द एज ऑफ 9 ही वॉज ए चाइल्ड प्रोडिजी। The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top-grade Veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. E. Mani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
0: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.6।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

या 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। 11:10 हो रहे ने। इस दे नाल ही साडी अज दी इह सभा हुण इत्थे समाप्त हुंदी है। कल सवेरे 3:53 ते तुहाडी सेवा च मुड़ तो हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आप थे अपने बारे दस दो जी, कौन
0: मैं
1: थे कितने?
0: रणधीर सिंह बांगड़ गांव जी गुड़ी जिला यमुनानगर से हरियाणा से जी।
1: और सुनाइए जी, क्या हाल चाल है आपके और हरियाणा
0: ठीक है
1: के?
0: जी, ठीक है जी। आपके कैसे हैं सर जी?
1: गीत की फरमाइश बता दीजिए, कौन सा गीत प्ले करें आपके?
0: गुरदास मान का लहजे जी, मैं आपके प्रोग्राम बहुत सुनता हूँ जलंधर के जी।
1: धन्यवाद जी, इसी तरह से प्रोग्राम में शामिल होते रह कीजिए अपनी फरमाइश लेकर, कुछ स्नेहा भी शामिल कर दें। फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांडा, इंदरजीत कौर, बेबी मनमीत ते मनविंदर सिंह पांडा, पंचकूला सैक्टर 9 तो आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान ते इन्हां दा पूरा चुग परिवार, सहारनपुर तो सुरेश नारंग ते आशा नारंग, मिली जुली फरमाइश गुरदास मान दे गाए गीत दी।

0: हेलो।
1: हेलो सत श्रीकाल।
0: हाँ जी, नमस्कार जनाब।
1: मैं संतोष कुमार यादव और मैं केरल से बोल रहा हूँ सर। सर
0: गीत कौन सा सुनाए जी?
1: गीत आप सुना दो, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, दुख हो भी दसना जरूर चाहिए।
0: फोन करने लिए शुक्रिया जी। गीत इन्हों की फरमाइश का जरूर प्ले कराएंगे, कुछ स्नेह भी शामिल करते हैं जी। पिंड नथाना, जिला बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। पिंड घुबाया, तहसील जलालाबाद, जिला फाजिलका तो पप्पू मुनीम, अमरबाई, राजू फौजी, हरप्रीत कौर, बलजीत कौर, हरमेश सिंह, गुर निरवैर, परनीत कौर, मनदीप, बबलू ते इन्हों का पूरा परिवार। चकला बाजार समाना तो पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल ते पूरा खुशदिल परिवार। गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेग विरक ते मीका विरक। थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।

0: हेलो
1: हेलो अश्विनी सर जी, नमस्कार।
0: धर्मा सागर जी, नमस्कार जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, सुरजीत
0: जरूर सुनावांगे जी। फोन करने लिए शुक्रिया जी। पेके होंगे मामा नाल सुनेहा भी शामिल कर दें जी। गिदड़बाह तो मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल हिनाशा ते बेबी कैरवी, करणवीर हाउस बा गुरु गोबिंद सिंह नगर पुछो कैंचियां तो, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दिपिंदर वरिंदर ते सिमरन। गीत पेके हुंदे मामा नाल।

अगला गीत सुनेहे तो प्ले करते हैं जी, मसीता डब वाली तो दर्शन लोड, सरगुन इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर ते हनी लोड, पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो सोन सिंह बूक निशान सिंह बूक सीरत कौर कीरत कौर अमर लाल ते इन्हां दी दादी जसवंत कौर दे नाल नाल सुरिंदर कौर बलविंदर कौर बलदेव सिंह चक कदे शाह नेड़े टिड्डी रोड फिरोजपुर तो। गीत अगला हरभजन मान ते जसपिंदर नूरूला दी आवाज़ च लौंग गवाईयां।

0: विजया जी
1: हूं तो पनीर ही पाउण रही धान
0: ओके,
1: दी। हाँ
0: ते
1: जी
0: बिजाई शुरू हो गई जी
1: मैं तैयारी है जी।
0: ओके,
1: हाँ जी
0: ते फरमाइश दस दियो जी गीत केड़ा प्ले करिए जी।
1: अच्छा मदर डे दी मुबारक है जी। मदर डे दी
0: मदर्स डे दिया सारे दोस्तों ने मुबारकां देतियां जी, ते तुसी फरमाइश दस दियो जी,
1: गुरदास मान दा जेड़ा मर्जी ला लो।
0: जरूर सुनावांगे जी। फोन करने लिए शुक्रिया जी। अलीका डबवाली तो बसंत सिंह, चन्न, राजकुमार, सुनीता ते कुलदीप गांधी पिंड राजपुरा दी पंचायत वालों, हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, ज्वाला सिंह, डॉक्टर धर्मवीर ते जगसीर सिंह पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो ही राज मिस्त्री मारुआना बोदला तो सुरिंदर कौर, बलविंदर कौर, रीना बाई, गुरमीत सिंह मखू फिरोजपुर तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी, मनीष बजाज ते लवली शर्मा, इन्हां दोस्तां दी मिली जुली फरमाइश ते गुरदास मान दी आवाज़ च एक गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद जी।
0: ते अपने बारे दस दो जी, ते अपनी फरमाइश बारे भी।
1: मां दी दुआ कदे खाई जांदी ते मां दी बददुआ भी टाली नहीं जांदी। भांडे मांज के चार पंज पुत्र पाल लैंदी, पर इक मां चार पंज पुत्रा तो संभाली नहीं जांदी। सुखदेव सिंह बस्ती शेर जनक नगर जलंधर सारे चुनवे सुनते प्यार भरी सत्या। बब्बू
0: ते गीत दी फरमाइश भी दस दियो जी।
1: मान का गीत सुना रहे हो जी, साडा की आपां तां दिन कट्टी जाने।
0: फोन करने लिए शुक्रिया जी। तुहाड़ी फरमाइश का गीत जरूर सुनने हैं जी। सुनेहे भी शामिल करते हैं जी। बागा बुराना तो सतनाम सिंह रखड़ा, अमरजीत कौर रखड़ा, तेग फतेह सिंह ते इन्हां दा पूरा रखड़ा परिवार, मुल्लापुर दाखा मंडी तो बिट्टू जैन, राजेश मट्टू, अरुणा बिट्टी, अभिषेक, गौतम, दीपक, संजय, नीलू ते इंदू जैन, इन्हां सारे दोस्तों की मिली जुली फरमाइश बब्बू मान की आवाज़।

प्रोग्राम दी अगली पेशकश मलूर तो कुलवंत गिल जसवंत गिल रमन गिल जिला मुक्तसर पिंड मोहला तो पाल गिल गुरदयाल गिल साधु गिल दीशा मोहला दर्शन बराड़ ते मलकीत गुड़ियाना ताज मुहम्मद अंसारी गुलाम साबी राही ते मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड तो अगला गीत सतविंदर बुग्गे की आवाज़ से याद करके।

तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पालह अकिर्त कना पूरन दृष्ट तेरी राम। ओ परमात्मा वड्डी ताकत वाला है, इन्ना बुलंद कि असी दुनियावी प्राणियां दी निक्की जिन्नी अकल उस परमेश्वर दे वड़प्पण नू

समझ ही नहीं सकती। अकाल पुरख प्रभु दी सिफतो सलाह बेअंत है, उस दी उपमा दे लई शब्द ही नहीं बने। इतां इसे तरह है जिस तरह राग बिलावल विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने, तू सुल्तान कहा हो मिया, तेरी कवन वडाई, जो तू देह सो कहा स्वामी, मैं मूरख कहण ना जाई। सरवण करदे हां भाई मनजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: तू सुल्तान कहा हो मिया, तेरी कवन वडाई, जो तू देह सो कहा स्वामी, मैं मूरख कहन न जाई। इस शब्द का गायन कीता सी भाई मनजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी बहु उपदेशात्मक है। बाणी विच एक आदर्शक शख्सियत उसारी लई सुचजी जीवन जुगत उपलब्ध है, जो वड्डे पागा नाल प्राप्त हुंदी है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विचली बाणी दे बाणीकारा ने शब्दां दी परिभाषा बयान कीती है, सिर्फ कोशागत अर्थ ही बयान नहीं कीते। जिवें सो मुला जो मन स्यों लरै, जा फिर काजी सो जो काया विचार है, ते जा फिर सो सुरतान जो दुए सरतान है। भगत कबीर जी अपनी रचना विच फरमाउंदे ने कि मुला केवल ओ है जो अपने मन नाल जूझदा है, इथों तक कि गुर उपदेश नूं ग्रहण करके काल नाल भी जूझण दी समर्था रखदा है, ओ जमा नूं भी शिकस्त दिंदा है। ऐसे मुला नूं सदा सलाम है। सुनदे हां प्रिंसिपल कृष्ण सिंह होरां पासों वार्ता, सो मुला जो मन स्यों लरै।
1: श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच 6 गुरु साहिबान, 15 भगतां, 11 भट्टां ते गुरसिखां समेत 31 प्रमुख रागां ते आधारित बाणीकारां दी बाणी है। विचार अधीन बाणी तुक भगत कबीर जी वलों उचारण कीती हुई है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित राग भैरों विच 1159-60 अंग ते सुभायमान है। भगत कबीर जी का जन्म बनारस विखे 15वीं सदी विच पिता नीरू जी ते माता नीमा जी दे जुलाहा परिवार विच होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लिखत पाठ का मूल स्रोत ते इस दी धर्म मूल धर्म चेतना की है दा बोध तुरकी बाणी आई, जैसी में आवै खसम की बाणी, तैसला करी ज्ञान वे लालो, हों आपो बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुकमाओ जीओ, आदि तुकां तों भली भांत प्रतख हो जाता है। बाणी अवेश वजों इस बाणी का यह निवेकला ते न्यारापण है। समुचे बाणी अध्ययन ते इस दी अंदरूनी गवाही तो यह भी स्पष्ट है कि यह तुरकी बाणी प्रचलित काव्य परंपरा तो मुक्त होके समय की हाणी एक नवी काव्य परंपरा का मुढ़ बनती है। बाणीकारां दीआं कुछ बाणी सत्रां तो भी परतक हुंदा है कि रब्बी अनुभव वजों यह बाणी विछोड़े का अहसास ही नहीं, जां इह किसे भी साधक की समाधि की अवस्था तक सीमित नहीं, सगों ब्रह्म विचार अथवा विज्ञानक पहुँच विधि तहत प्रभु जग्यासुआं नूं इह मनुखी जीवन की विशेष विवेकी बिरती नाल भी जोड़ती है। गुरु नानक साहब ते कबीर साहब दे इन्हां बाणी बोलां तों भी प्रतक है, गावहो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो, लोग जाने इह गीत है, इह तो ब्रह्म विचार। सिखी चेतना वाले अजिहे लिखत पाठ की यह भी विशेष प्रमाणिकता ही है, जो तत्कालीन जां समकाली धर्मां तों इस दे सिधांतक नखेड़ की मूल आधारशिला भी बनती है।

दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा। आप जी सरवण कर रहे सो भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

भगत कबीर है जानी रुक मांगत कर तू राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद तत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी मत